Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: Like us on facebook.com/fm247365

0: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अमीना ताहिर, कंसल्टेंट एंड ओनर एट कंफर्ट डेंटल क्लिनिक कराची, बुध 8 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा।
1: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
2: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।

करती मोहब्बत ना सिला कोई, सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल।

0: आशीष बिगोल डेली लो फिट रहो।
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500।
3: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
2: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो दो दुनी चार।
4: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
6: दिस इज द साउंड ऑफ योर क्लाउड बिल एंड दिस इज द साउंड ऑफ इट गेटिंग रीइंबर्स्ड। Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
7: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
8: 100 FM।
9: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: Cool King।
11: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
12: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
13: हल्का सा टच हुआ, लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा।
14: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
15: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
14: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: एंड अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
15: एंड

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: कूल किंग हेयर ऑयल. जैसे चलता फिरता एसी.
3: And अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: एंड
4: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
0: एंड
5: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: 5.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर। अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: This program is brought to you by
1: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
0: And अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें. And

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने आप नाक उसे 3 बार मौत देखे
5: टाइम से ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
12: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
12: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.

0: आज भी इस्पिगोल डेली लो फिट रहो।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
2: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
3: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
5: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। AI, SaaS, FinTech, HealthTech, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टीयर 1 के लिए $6,000 और टीयर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
6: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹5,000 डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: एंड अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।

0: This program is brought to you by Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
1: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And

0: ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ ਫਿਟ ਰਹੋ
1: ਬਿਗਾਰੀਆ ਚੈੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਦ ਕਲਾਉਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਟੂ ਸਕੇਲ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਮੈਨੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਸਟਰਗਲ ਬਟ ਨਾਟ ਐਨੀਮੋਰ Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान अभी जैजकैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैजकैश है ना

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मेल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश। कूल किंग, चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाए ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
7: एंड

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अमीना ताहिर, कंसल्टेंट एंड ओनर एट कंफर्ट डेंटल क्लिनिक कराची, बुध 8 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा।
1: This program is brought to you by
2: Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता एसी।
3: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
4: And

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
0: And
2: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
3: तूफान है हर जीत की पहचान है.
0: And
4: फिनिक्स लगा और भूल जा
5: खालिस अज्जा भरोसेमंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
6: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: किसने कहा था पैसे

0: is facebook.com/FM247365. FM247365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 के मुताबिक दुनिया भर में 31 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद मंशियात इस्तेमाल करते हैं, जबकि तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख अफराद मंशियात के बायस सेहत और जिंदगी के संगीन मिसाइल का सामना कर रहे हैं। ये आदाद व शुमार मंशियात के बढ़ते और इंतहाई तेजी से बदलते रुझान के पेश नजर पैदा होने वाले पेचीदा मिसाइल से आगाह करते हैं। पाकिस्तान भी इस आलमी चैलेंज से महफूज नहीं। 2013 के कौमी सर्वे बराए मंशियात के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 67 लाख अफराद मंशियात के इस्तेमाल के शिकार हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 68% आबादी 30 साल से कम उम्र, जबकि 27% 15 साल से कम उम्र है। यही नौजवान आज एक फैसला कुन मकाम पर खड़े हैं, जहां वो मंशियात के खतरात का सामना भी कर रहे हैं और एक रोशन मुस्तकबिल, रोशन महफूज और तरक्याती याफ्ता पाकिस्तान की उम्मीद भी है। ये सिर्फ आदाद नहीं बल्कि जिंदगियां, खानदान और मुस्तकबिल हैं, जिन्हें महफूज रखना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस जंग में सबसे मुअसर हथियार आगाही है। वालदैन, असातिज़ा, मीडिया, तबकात और नौजवान, हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्लों को मंशियात के खतरात से महफूज रखें। आज इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर आए हम सब मिलकर अहद करें कि हम आगाही को अमल में बदलेंगे, उम्मीद को ताकत बनाएंगे और मिलकर एक मंशियात से पाक पाकिस्तान की तामीर करेंगे। आपका एक फैसला जिंदगी बना सकता है और एक नशा सब कुछ मिटा सकता है। फ्यूचर की रेस में नशा शॉर्टकट नहीं, डेड एंड है। 26 जून सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि याद दहानी है कि जिंदगियां कैसे बचाई जा सकती हैं। एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पाक पाकिस्तान।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: बैक टू बैक ओनली म्यूजिक, नो आरजे टॉक।
5: ओनली म्यूजिक, नो आरजे टॉक।
4: दिस इज FM 100।
6: कम ऑन।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: इजी वाला बैंक
1: FM 24/7/365 FM 24/7/365

वन हंड्रेड आपका

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. रुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Like us on facebook.com/FM247365.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji, as usually honge aapse khoob sari baatein share karenge, kuch information aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music. तो चलें जी, सबसे पहले कर लेते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बकायदगी से आगाज, क्योंकि फिर बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं. और बकायदगी से जो आगाज है वो हमारी बातों से नहीं बल्कि एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ होता है. तो चलें जी, करते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बकायदगी से आगाज.

Yes, my friend. So I am back at program. Lunchtime special ka baqaidgi se aghaz jo hai wo ho chuka hai. Aur kyunki ab baqaidgi se aghaz ho chuka hai, to koi baat karne se pehle hi hum aapko batayenge tarika-e-kaar ki kaise aap ban sakte hain hamare program ka hissa. To apne mobile ke right message option mein jaye, KHI likhein, space dein, apna message type karein aur send kar dein 3636 pe. तो इस तरीके कार के जरिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने हाल हवाल बता सकते हैं. एंड आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे. और अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो इस वक्त क्या ताज़तरीन सूरत हाल है, ये हम आप ही की जुबानी आपसे जानेंगे. तो आप हमें 3636 पर मैसेज कर सकते हैं. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. तो भाई हम कर रहे हैं आपके मैसेज का शिद्दत से इंतजार. तो जल्दी जल्दी मैसेज करें और अपनी अपनी हाजिरी लगाएं, क्योंकि हाजिरी लगाना भी है बड़ा जरूरी. और आप लोगों ने हाजिरी लगानी है, बताने कि इस वक्त कौन कौन प्रेजेंट है और कौन कौन एब्सेंट है. एंड आई होप सो कि सब इस वक्त प्रेजेंट हो, सबने जो है वो जल्दी जल्दी अपनी हाजिरी लगा दी हो, ये भी बड़ा जरूरी है. और वैसे हमेशा बात की जाए ना हाजिरी लगाने की, जहां तक तो जिनके अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर के हवाले से बात की जाए तो स्कूल में या कहीं भी और आई थिंक ऑफिस वगैरह में तो अब इतना नहीं, लेकिन वैसे आपकी अटेंडेंस जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से हो, तो जिनका नाम ए से शुरू होता है सबसे पहले ना उन्हीं की अटेंडेंस लगती है, प्रेजेंट टीचर, प्रेजेंट मैम. और उसी के साथ साथ उन लोगों का ना एक ये भी बड़ा खतरा होता है कि जब एग्जामिनेशन होते हैं तो सबसे आगे उन्हीं को बिठाया जाता है. और सबसे आगे बैठने का ना एक फेयर है जो हम सबको है, बहुत ज्यादा हम सबको फेयर है. सबसे आगे बैठेंगे तो टीचर की नजरों में रहेंगे, सबसे आगे बैठेंगे तो किसी से बात करेंगे तो पता चल जाएगा. बेसिकली अगर बात की जाए सबसे आगे बैठने की ना, तो वो जो अहम तरीन फेयर होता है वो ये होता है कि सबकी नजरों में हम रहेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि सबसे आगे बैठने में बड़ा सुकून है, बंदा सुकून से बैठे, तसल्ली से बैठे, अपना काम करे. और अब उसी वक्त बिकॉज मैं भी फ्रंट पे तो नहीं, थोड़ा सा बैक पे, लाइक मिड में बैठा करती थी, समटाइम्स फ्रंट पे बैठा करती थी, तो टीचर्स की ना ज्यादा नजर बैक बेंचर्स पर ही होती है, जो कि बड़ी शरारतें करते हुए पकड़े जाते हैं या शरारत कर रहे होते हैं, क्योंकि बैक बेंचर्स की नेचर होती है. लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ बैक बेंचर्स ही बेवजह बदनाम है, शरारतें सब कर रहे होते हैं लेकिन बस बेचारे बदनाम बैक बेंचर्स ही हैं. तो आप अपने स्कूल में कहां बैठा करते थे, फ्रंट डेस्क पे बैठा करते थे, सेंटर में बैठा करते थे या फिर सबसे पीछे? तो आपकी पसंदीदा जगह कौन सी हुआ करती थी बैठने की? क्या आपको भी आगे बैठने से डर लगता था या नहीं, ये भी हमें जरूर बताएं. आज स्कूल की बात खुल गई है, तो बस जब खुल गई है तो इसे पूरा ही खोलते हैं और आपसे जानते हैं कि आप कौन सी सीट प्रेफर करते थे बैठने के लिए. इंटरेस्टिंग सवाल है ना, बिल्कुल भाई. आप जाएं फ्लैशबैक में, याद करें कि आप कहां बैठा करते थे. जब तक आप लोग याद कर रहे हैं हम आपको एक ट्रैक सुनाते हैं, सोचने का मौका देते हैं, फिर वापस आकर आपसे गुफ्तगू करते हैं.

0: देख के नहीं चलाता क्या?
1: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
2: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
3: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिजा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

Yes, everybody. So I am back. तो सोचा आपने याद किया कि आप स्कूल में कौन सी सीट पे बैठा करते थे, फ्रंट में, मिडिल में या फिर बैक पे? बैक बेंचर थे आप? कहाँ आप बैठना प्रेफर किया करते थे? वैसे फ्रंट पे अक्सर औकात हम ना बैक बेंचर्स ये शिकायत भी करके फ्रंट पे आया करते थे कि वो क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मेरी आईसाइट जो है वो वीक हो गई है, इसलिए भी मुझे आगे बैठना है। और सम टाइम्स जो है वो टीचर ना पनिशमेंट के तौर पर भी आपको आगे बैठा दिया करती थी, जिस वक्त आगे बैठना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। और सबसे ज्यादा मुझे जो स्कूल में एक दर्दनाक चीज लगती थी ना, वो ये लगती थी, अच्छा मेरी हमेशा जो कंप्लेन स्कूल में आई ना, वो लास्ट तक, मतलब मैट्रिक तक मेरी कंप्लेन ये थी कि जी ये बातें बहुत करती हैं, बहुत बातें करती हैं, और मेरी ये नेचर है बातें करने की। और ये मेरी टीचर ये भी गुस्सा होती थी कि मसला ये है कि फातिमा की सीट अगर चेंज कर देना, जिसके साथ भी चेंज कर देंगे उसके साथ भी बातें करना शुरू कर देती हैं। तो ये है कि टॉकेटिव नेचर

करना शुरू कर देती हैं। तो ये है कि टॉकेटिव नेचर होने के ना बड़े नुकसान आते हैं, तो बड़ी शिकायतें मेरे घर पर हमेशा मेरी बातों की वजह से आई हैं। लेकिन फिर भी जो सबसे दर्दनाक चीज हुआ करती थी वो ये होती थी कि जो आपकी दोस्त है उसके साथ जब आपकी सीट चेंज कर दी जाए और किसी और के साथ बिठा दी जाए, आए हाय, तो तब बड़ा बुरा लग रहा होता है। और फिर आप पर ये सख्ती भी हो कि अब अगर कोई मुझे बात करता हुआ नजर आया तो फिर देखना। तो ये वो चीजें हैं, ये वो डांटे हैं जो हम सब ने आई एम श्योर जरूर खाई हैं अपने अपने स्कूल लाइफ में, स्कूल लाइफ में नहीं तो कॉलेज लाइफ में। ये सारी शिकायतें जो है ना वो हमारे पेरेंट्स को भी मौसूल होती रहती हैं कि बातें बहुत कराए, ये बहुत कराए। तो मुझे तो भाई बातों पे बड़ी डांट पड़ी है हमेशा। लेकिन जब मेरी दोस्त के साथ जो है वो सीट चेंज हुआ करती थी तो बड़ा अफसोस हुआ करता था कि यार अब ऐसा लगता था ब्रेक में हम लोग बातें करेंगे या ये करेंगे, तो बस ये एक थोड़ा सा सैड बात हुआ करती थी। लेकिन मैं हाँ फ्रंट में भी बैठा करती थी और मिडिल में भी, लेकिन बैक बेंचर कभी नहीं रही। तो आप भी जरूर हमें बताएं। इसी के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं, हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहती हैं आजकल बहुत बिजी चल रहा है, चल रही हूं घर शिफ्ट करने में। ओके, इन्होंने हमसे एक ट्रैक की रिक्वेस्ट की है सज्जाद अली की, और कहती हैं डेडिकेटेड टू यू, थैंक यू सो वेरी मच। लोग कल हमने भी आपको एक ट्रैक डेडिकेट किया था भाई, आपने कल सुना था, मैंने कल रहीम शाह के ट्रैक को शामिल करते हुए आपका बिलखसूस नाम लिया था क्योंकि रहीम शाह के ट्रैक्स की हमेशा रिक्वेस्ट आप किया करती हैं। जक्रिया ने भी हमें मैसेज किया है ऑल राइट, लेकिन कुछ लिखा नहीं है, ठीक है जी। इसी के साथ साथ हमें मैसेज करती हैं रीमा नहीं सॉरी, हमें लखराज मैसेज करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फातिमा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूं। अपना नाम बताते हैं, कहते हैं नुसरत साहब का कोई सॉन्ग चला दें, और उन्होंने बताया भी है कौन सा चला दें। ठीक है जी, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसे शामिल करें। लेकिन लुकबल की आ गई है एक अदद रिक्वेस्ट, कहती हैं जी प्लीज इस ट्रैक को जो है आप शामिल कर लें। तो चलें जी हम करते हैं, सज्जाद अली की आवाज आपको सुनाते हैं और इसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो चलें जी पहले एक ट्रैक एंड देन वी बी राइट बैक।

All right, so I am back with this track. और इस track की request हमसे जो है वो लुक वर्ल्ड ने की थी और ये track उन्होंने हमें dedicate भी किया है. So thank you so much. और ये बड़ा अच्छा सा track है. मैंने सजाद अली का ये track for the very first time सुना है. वचन दे दो तो लुक वर्ल्ड आपको वचन चाहिए, हम आपको देते हैं वचन. Thank you for dedicating this track. All right. रीमा भी हमें मैसेज क्वेट नहीं कहती. अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप मेरे भाई हसनैन की तरफ से भी आपको सलाम. रीमा वालेकुम अस्सलाम जी, आपको भी आपके भाई को भी. इसी के साथ साथ लुकबल कहती हैं थैंक यू लवली आरजे, आप रहीम शाह का जब सॉन्ग प्ले करती हैं मुझे बहुत खुशी होती है और मैं स्कूल में हमेशा सेंटर में बैठी थी. ओके, तो भाई लुकबल भी हमेशा सेंटर में बैठा करती थी. ओके जी, नोट कर लिया है हमने. और हमारे पास मैसेज आया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाउ आर यू. वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं जी, कहते हैं आई एम गुड. यस, आलू की कतलियां इनके लंच में, कहते हैं आपका 2 डेज लंच हो चुका है. ओके, बिल्कुल हम आपको जरूर बताएंगे. कहते हैं क्लास में हमेशा पीछे वाली सीट पर दोस्तों के साथ बैठा करते थे, टीचर्स का गुस्सा भी हम पर होता था. पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा. रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी, सच्चा ऑनेस्ट रशीद खान भाई. रशीद खान ने बिल्कुल सच्चाई के साथ बताया है कि ये जो है वो बैक बेंचर थे और टीचर से बड़ी डांटें भी इन्होंने खाई है अपने बैक बेंचर होने की वजह से. ओ माय गॉड, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस. लड़के बेचारों को बड़ी डांट पड़ती है क्योंकि लड़के जो है वो बातें नहीं, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से टीचर्स को बड़ा गुस्सा आता है. और बैक बेंचर्स तो बड़ा ही कोई तंग करते हैं. ठीक है भाई, तो आज कौन कहां बैठता है, किस वजह से डांट पड़ती है, बिल्कुल हम ये सब जानेंगे. और इसी के साथ साथ हम एक अदर ट्रैक की जानेब भी जा रहे हैं. मैसेजेस का सिलसिला जारी है जिसे हम एक एक करके कर रहे हैं शामिल. कहीं मजा आएगा. विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक.

हेलो मेरे दोस्तों, तो आ चुकी हूँ मैं वापस और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। भाई आज है 8th of July, यानी कि जुलाई की 8 तारीख है आज। तो अगर आज भी मेरे सुनने वालों में से किसी की सालगिरह है या कोई खास दिन है आपकी जिंदगानी का, तो जी आपको बहुत मुबारक हो आरजे फातिमा खान की जानिब से। और हम यही कहेंगे आपको कि जी आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, और नाराजगी वराजगी है तो जी उसे भी खत्म कर लें। आई डोंट नो, बट मुझे समझ नहीं आता कि लोग किसी से नाराज रह के कैसे रह लेते हैं। मतलब मुझे यकीन नहीं आता कि कोई सो कैसे जाता है किसी से नाराज होकर। सबकी अपनी अपनी नेचर है, अक्सर औकात गुस्सा बहुत ज्यादा भी होता है तो नाराजगी जायज भी होती है। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि चलो एक दिन वेट कर लो, लेकिन एटलीस्ट सेकेंड डे बिल्कुल रुजू करो और मामला को जल्द अज जल्द खत्म कर लो। मुझे नहीं पसंद नाराज रहना या कोई आपसे बात नहीं कर रहा है कुछ। मैं कहती हूँ यार रहो, कूल रहो, रिलैक्स रहो, लड़ भड़ के मत रहो। मुझे हमेशा से ये लड़ाई और ये नाराजगियां बहुत बुरी लगती है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो आपकी जिंदगी बड़ी मुतासिर होती है, तो इसलिए ट्राई टू बी कूल एंड काम, चिल रहें, एंजॉय करें। और अगर कोई गलती हो गई है तो जी कोई बात नहीं, कोशिश करें कि गलती वापस ना हो। रियलाइज करें कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं, और कोशिश बस ये करनी है कि आगे ऐसी कोई गलती आपने नहीं करनी है। और जब आप ऐसे आज़म रखते ना तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं, फिर वो गलती आपसे नहीं होती है। अच्छा भाई, आज ना मेरा जो प्रोग्राम है, यानी कि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल, वो लंच टाइम स्पेशल कम और रिक्वेस्ट शो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। बड़ी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुकी हैं जिसे मैं जरूर शामिल करूंगी, लेकिन इसके लिए जो एक चीज बड़ी जरूरी है जो मेरे लिसनर्स को करनी है वो ये है कि थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों ने। जरूर मैं शामिल करूंगी क्योंकि अभी मेरे पास ब्रेक भी होता है, इसलिए आप लोग जानते हैं। तो ब्रेक के बाद अभी हम रशीद खान का ट्रैक लगाएंगे, उसके बाद जो है वो रीमा के ट्रैक को भी शामिल करेंगे। अलुपल कहती हैं लंच का तो मैंने बताया नहीं आपको, आज लंच में चिकन आलू बने हैं विद रोटी, आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है? आई लव यू ऑलवेज माय लवली आरजे। थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। यार मेरा सबसे फेवरेट फूड जो है ना वो है आई लाइक राइस, मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं, चावल से बनी हर चीज को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। आई रियली लाइक चाउमिन ऑल्सो, मुझे चाइनीज, वैसे चाइनीज कुजीन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड बिरयानी। तो मतलब ऑल दो जिसमें चावल आ रहे हैं वो मेरे बड़े पसंदीदा होते हैं, तो ये है मेरा फेवरेट फूड। चलें जी रशीद खान के पसंद के ट्रैक की जानिब चलते हैं, फिर वापस आकर मजीद मैसेजेस को भी शामिल करेंगे जो हमारे पास बैक टू बैक आ रहे हैं। रीमा का मैसेज अभी पेंडिंग है जिसे हम शामिल करेंगे ब्रेक से आने के बाद।

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Ji haan, main aa chuki hoon wapas, kyunki hamara aur aapka saath hota hai 12 se 2 ke darmiyan, aur ye saath hamara aur aapka qaim o daim hai. Break ke baad hum aa chuke hain wapas, aur guftugu ka silsila jo hai wo aap logon ke saath jari hai. और आज भाई हमारे लिस्नर ने हमसे बहुत सारी बातें तो करे हैं, यानी कि मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग मैसेजेस हैं जिसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट्स भी मौजूद हैं कि जी ये ट्रैक भी शामिल कर लें. उसी के साथ साथ आज हम ये बात कर रहे थे कि आप अपने स्कूल में कहां बैठा करते थे, अपने क्लासरूम में, फ्रंट में, मिडिल में, या फिर आप बैक बेंचर हुआ करते थे, तो क्या सूरत हाल है. इस हवाले से हमें जरूर आगाही फरहम करें, क्योंकि आज हम आपको आपके बचपन में लेके जा रहे हैं, आपकी स्कूल लाइफ में आपको लेके जा रहे हैं, तो हमें जरूर बताएं. और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे. तो चले जी प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत को कायम करते हैं, यानी कि एक अदर ट्रैक तमाम सुनने वालों के नाम, एंड देन विल बी राइट बैक.

तो प्रोग्राम के सेकेंड हाफ की रिवायत हो गई कायम, यानी कि एक तो ट्रैक आप सभी सुनने वालों के नाम। और भाई अब जब हम वापस आ चुके हैं तो अब होगी बात कुछ खाने पीने के हवाले से कि भाई आपके लंच में क्या है, क्या बन चुका है, क्या बनने जा रहा है। काफी हद तक मैसेज हमारे पास मौसूल हो गए हैं जिसमें रशीद खान हैं, लुक वर्ल्ड हैं, उन्होंने अपना लंच बता दिया हमें। रशीद खान के लंच में आलू की कतलियां हैं, लुक वर्ल्ड के लंच में चिकन आलू बना है। उसी के साथ साथ हमें जो है वो रीमा मैसेज करती हैं, कहती हैं मेरा बेटा सुभान आपको बता रहा है कि लंच में चिकन बिरयानी है और फातिमा एक सॉन्ग लगा दें। ओके जी, डील डन है, हम जरूर इसे शामिल करेंगे। अच्छा भाई, इसी के साथ साथ हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं जुलाई माय बर्थडे मंथ, मेरी बर्थडे आने वाली है और आप भूल जाती हैं मेरी बर्थडे 20 जुलाई को है मेरी बर्थडे। ओके जी, सो हम याद रखेंगे लुक वर्ल्ड। ये देखिए, अगर आपने हमें अपने नाम भी नहीं लिखा लेकिन हमें फिर भी याद है कि लुक वर्ल्ड की जो है वो बर्थडे होती है 20 जुलाई को, तो बिल्कुल जी हमें याद है, हम जरूर आपको करेंगे विश आपकी बर्थडे वाले दिन। इंशाल्लाह, आई होप आई रिमेम्बर दिस डे। ऐसे मैं याद रखती हूँ लोगों की बर्थडे, भूलती नहीं हूँ, लेकिन समटाइम्स कोई ना कोई काम की वजह से, कोई मसरूफियत की वजह से समटाइम्स आई फॉरगॉट, बट अदरवाइज आई रिमेम्बर। ओके जी, तो भाई आपके लंच में क्या है, क्या बन चुका है, क्या बनने जा रहा है, कुछ चटपटा से खाने का इरादा है या फिर कुछ हेल्दी या फिर अनहेल्दी, क्या क्या खा रहे हैं आप लोग अपने लंच में। भाई रशीद खान ने हमसे पूछा था कि आपके 2 डेज का लंच हो चुका है, बिल्कुल हम आपको बताते हैं। कल मैंने खाई थी बेसन की रोटी और लौकी की सब्जी, और लौकी की सब्जी कल मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम खाई थी, बड़ी मजे की बनी थी। और वो ज्यादा मजे की इसलिए बनी थी क्योंकि मैंने बनाई थी, तो मुझे लग रहा है कि शायद इसलिए बहुत ज्यादा मजे की बनी थी। तो कल मेरे लंच में ये था। आज मैंने लंच में अभी खाए हैं राइस विद द चिकन कबाब्स, तो ये मेरे लंच में आज था, तो मेरे 2 डेज का लंच हुआ जाता है मुकम्मल। रशीद खान को हमने इत्तला फराहम कर दी है अपने लंच से रिलेटेड, और बाकी लोगों के लंच का हम कर रहे हैं इंतजार। तो जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें और अपना लंच हमसे शेयर करें। जब तक हम चलते हैं एक ट्रैक की जानब जिसकी रिक्वेस्ट हमसे की है रीमा ने, सुरीमा एंजॉय।

0: तो रीमा आपकी पसंद के ट्रैक को भी हमने शामिल कर लिया है एंड आई होप सो कि आपने सुन लिया होगा। अच्छा भाई, आप अपने स्कूल में कहाँ बैठा करते थे, इस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है, फ्रंट पे, मिडिल में या फिर लास्ट में, और आपको डांट पड़ती थी? आई एम श्योर कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसे कभी डांट नहीं पड़ी हो। डांट तो हम सबको पड़ती है अब बिल्कुल टीचर से, और कभी ज्यादा बातें करने पे, कभी शरारत करने पे, कभी किसी चीज को ना लाने पे, कभी होमवर्क कम्प्लीट ना करने पे, ये सारी चीजें जो है वो हमारी डांट का हिस्सा रहती है। कभी कभार ये भी होता है कि जी टेस्ट दिया है, टेस्ट ना याद करने पर, तो आपको किस चीज पर डांट पड़ी है हमें जरूर बताएं। अच्छा भाई, आज 8 जुलाई को कौन से दिन मनाए जाते हैं? आज नेशनल फ्रीजर पॉप डे मनाया जा रहा है। ओके, ये वो डे है यानी कि आपने कभी आइस लॉलीज खाई हैं, वो बड़ी मजे की लगती हैं, वो जो एक ट्रांसपेरेंट जो है वो पैकेट में होती हैं, अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं उसमें, लीची जो है, ऑरेंज, मैंगो, आई डोंट रिमेम्बर सो मेनी फ्लेवर्स उसमें होते हैं, और मैं कहती हूं कि गर्मी का अगर तोड़ है ना तो वो यही पॉप्स हैं जो बड़ी मजे की लगती हैं, जिसे आइस लॉली कहा जाता है। एंड आई एम श्योर कि आइस लॉली भी हमारी जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा रह चुकी हैं, जो कि हम सब ने बड़े शौक से खाई हैं। तो भैया, आज उसका दिन भी मनाया जा रहा है। आपने कभी खाई है या नहीं, हमें जरूर बताएं। फिलहाल हम चलते हैं एक अदद ब्रेक की जानेब, और ब्रेक के बाद आते हैं वापस आपके मैसेजेस का हम कर रहे हैं इंतजार, और उसे करेंगे हम शामिल, तो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। पहले एक ब्रेक और वापस आएंगे हम अली अजमत की आवाज के साथ।
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है, और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रिइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500, और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पैन, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
5: FM 100, like us on facebook.com/fm247365।
6: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

रहेगा। कल फिर से समुद्री बादलों का डेरा होगा आसमान पर। हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेशेंगोई मौजूद रहेगी और समुद्री हवाएं भी बहाल हो जाएंगी। तो ये थी जी मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको यह आगाही फराम करते हैं और उसी के साथ साथ चलते हैं एक अदा ट्रैक की जाने। तो चलते हैं जी और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

यस एवरीबॉडी, सो इसी के साथ साथ प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का वक्त भी हुआ जाता है खत्म। इंशाल्लाह मेरी होगी आपसे मुलाकात कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम। रखें अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, गुस्से से परहेज करें क्योंकि गुस्सा जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत मुजर है और ये आपको बड़े नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि इससे आपने रहना है कोसों दूर और कोशिश करनी है कि जी जो ये गुस्से वाला चेहरा है उस पर कभी मुस्कुराहट भी ले आए, इससे भी बहुत मामले हल हो जाते हैं। तो भाई हमारा तो रोजाना की बुनियाद पर देने वाला आपको पैगाम यही होता है कि जी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुस्से को करें टाटा बाय बाय। अगर है किसी से नाराजगी तो सुलह सफाई कर लें, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दें। और इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड।

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365।
2: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
3: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
4: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
5: हमारी जिम्मेदारी है।
6: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
9: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
8: FM 100 टाइम चेक। इट्स 2 PM।

0: Hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan, and janab, aap log sun rahe hain program Sehatmand Daant, Sehatmand Zindagi, which is brought to you by Platinum Pharmaceuticals, yani oral health ki baat Platinum Pharma ke saath. Aur hamare show ka naam hai Sehatmand Daant, Sehatmand Zindagi. So janab, we have Dr. Amina Tahir with us, PGDIP Dental Clinic Sciences UK, BDS Pakistan, RDS Pakistan, Principal and Owner at Comfort Dental Clinic, DHA Phase 2 Extension, Karachi, Queen Mary University, London, UK, Postgraduate DIP Dental Clinical Sciences, Karolinska Institute, Sweden, Clinical Exchange, Ultimus Institute of Dental Medicine, PAG, BDS, RDS. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Thank you so much, Dr. Amina Tahir, and for being here. So, janab, aaj hum baat karne wale hain daanton ki sehat ke hawale se, aur isi hawale se hum Dr. Sahiba se jo hain wo sawalat karenge. So, sabse pehle jo mera sawal hai Dr. Amina Tahir se, it is ke daanton ko din mein do baar brush karna ek to waise hi zaruri hota hai, aur isi ke saath saath mujhe ye bataiye, hamare listeners ko ye bataiye ki brushing ke saath saath is it necessary ki flossing bhi karni chahiye?
1: Acha. तो देखें, जो दांत दांतों की सफाई के लिए जो बेहतरीन तरीका है, जो रेकमेंडेड तरीका, वो ये है कि दिन में आप दो दफा आप टूथब्रश करें, यानी एक सुबह के टाइम और रात को सोने से पहले.
0: ओके.
1: तो जब हम टूथब्रश करते हैं तो दांत की जो आगे की सतह होती है, पीछे की सतह होती है और ऊपर की सतह, ये सब जो है टूथ ब्रशिंग से कवर हो जाती
0: ठीक है.
1: लेकिन दो दांत के जो दरमियान स्पेस होती है,
0: सही,
1: जहां मैल जमती रहती है,
0: ठीक है,
1: खाना भी फंसता रहता है, इस एरिया को साफ करने के लिए फ्लॉसिंग रिकमेंडेड है.
0: ओके.
1: सो देयरफॉर ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, और दिन में एक दफा फ्लॉस का इस्तेमाल करना जरूरी है.
0: जरूरी होता है, ठीक है. साथ में हमारे लिसनर्स को ये भी बताइए कि मोस्टली जैसे हम ये समझते हैं अक्सर कि बस हमने ब्रश कर लिया, बहुत से लोग जो हैं वो दो बार ब्रश नहीं करते, एक बार कर रहे होते हैं, जबकि दो बार ब्रश करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि चलो यार ब्रश कर लिया. अभी जैसे फ्लॉसिंग के हवाले से आपने बताया डॉक्टर साहबा कि फ्लॉसिंग जरूरी होती है, वो इस वजह से क्योंकि जहां जहां ब्रश नहीं पहुंच पाता है तो उस जगह फ्लॉसिंग काम आती है. और जाहिर है जब दांतों के बीच में एक एक प्लाग जमा हो जाता है, चीजें जमा हो जाती हैं, तो वो जो है दांतों की हेल्थ के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है. तो दूसरा जो सवाल मैं आपसे ये करूंगी, इट इज अबाउट कि माउथ वॉश के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत से लोग जो है माउथ वॉश यूज नहीं करते हैं, तो माउथ वॉश जो है वो दांतों के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है?
1: माउथ वॉश फायदेमंद है लेकिन जरूरी नहीं होता. टूथ ब्रशिंग और फ्लॉसिंग का मुतबादल नहीं है. तो माउथ वॉश के चंद फवायद भी हैं, जैसे सांस को वो ताजा कर देता है, अगर आपको मसूड़ों की कोई बीमारी है उसको बेहतर करने में मदद करता है, दांत को ताकत देने में इजाफा कर देता है. लेकिन अगर तरजीह दी जाए तो किस चीज की वो है, वो ये कि सबसे पहले आप टूथब्रशिंग करें, उसके बाद फ्लॉसिंग, एंड लास्टली माउथ वॉश अगर जरूरत हो तो.
0: सही, मतलब लेकिन इसको भी हमें डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए.
1: जी, इट्स इजाफी सहूलत, आप समझ लें.
0: सही,
1: इट्स नॉट कि आप जरूरी इसको यूज करें.
0: सही. अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है ये बहुत से केसेस में ये चीज हो रही होती है, इवन स्पेशली बच्चों के साथ, जैसे कभी खेल खेल में उनका अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है कि दांत टूट गया, कोई चीज ऐसी लग गई, बॉल लग गई, कुछ भी लग गया, तो इस इमरजेंसी में क्या करना चाहिए? मोस्टली केसेस में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दांत जो है वो आधा वो हिलना शुरू हो जाता है लेकिन वो पूरा टूटता नहीं है, ठीक है. और कभी तो ऐसा होता है कि एकदम से दांत जो है वो पूरा टूट जाता है अगर कोई ऐसा जोर का हिट लगा है. तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर किसी बच्चे या बड़े के साथ ये चीज हो जाए?
1: तो देखिए, सबसे पहले डोंट पैनिक, क्योंकि इट्स वेरी स्कैरी कि दांत का पीस टूट गया, या पूरा दांत भी कभी कभार बच्चे का निकल जाता है, यू नो, व्हेन दे आर प्लेइंग. तो इसमें यह है कि अगर ज्यादा चोट लगी है, खून आ रहा है, तो आप एक साफ कपड़े से या साफ कॉटन से थोड़ा सा दबाव कर दें ताकि खून रुक जाए.
0: सही.
1: अगर फेस पे स्वेलिंग हो रही है तो आप आइसिंग कर लें, और दर्द है तो फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप पेन किलर ले लीजिए. लेकिन जो सबसे अहम बात यह है इन अ ब्रोकन टूथ कि आपको डेंटिस्ट के पास फौरन विजिट करना है.
0: अच्छा.
1: तो फौरन राब्ता करें, फौरन विजिट करें, एंड अगर दांत का पीस कहीं जमीन पे गिरा हुआ आपको मिल जाए या पूरा दांत जो निकल जाए मिल जाए, उसको आपने कैसे महफूज रखना है, थोड़े से दूध में या थूक में, ठीक है, थोड़े से थूक में महफूज रख के आप ले जाएं डेंटिस्ट के पास एंड उसको जो है खुश करने की कोई जरूरत नहीं है कपड़े में या टिश्यू में, क्योंकि खुश्की जो है दांत को प्रिजर्व नहीं रखती,
0: ठीक है।
1: तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे अहम है अबाउट डेंटल इमरजेंसी इस टाइम, आप जितना जल्दी डेंटिस्ट के पास जाएंगे उतने ही ज्यादा दांत को बचाने के इम्कान होंगे।
0: सही सही। अच्छा, आपने ये अभी जो बात बताई है दांत के हवाले से कि उसको सेव कैसे करना है, या तो आपने बोला दूध के अंदर,
1: यस,
0: या फिर आपका जो स्पिट होता है उसमें आप सेव करें। हम लोग यूजुअली कार्टून्स में देखते थे टूटा हुआ दांत, हमने जो है वो तकिए के नीचे रखा, सुबह उठे तो कॉइन बन गया। तो आपने ये चीज बताई तो अचानक से मुझे वो सीन ना एकदम रिमाइंड हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही एक डिस्कस कर लेती हूँ कि मतलब दांतों के हवाले से भी बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं, ऑब्वियसली होती है, मिथ्स एंड फैक्ट्स होते हैं, वो भी हम आज डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अभी भी इस चीज को हम मिथ कह सकते हैं कि बहुत से लोगों से ये सुना है कि स्केलिंग से दांत जो है वो वीक हो जाते हैं, जबकि मैंने जितने भी शोज किए हैं दांतों के हवाले से उसमें मुझे अंदाजा हुआ कि स्केलिंग जो है वो ऐसा नहीं करती है। तो आप थोड़ा और हमारे लिसनर्स को ये क्लैरिफाई करें कि स्केलिंग के लिए जो स्केलिंग हम कराते हैं दांतों में उसके क्या फायदे हैं और कितने अरसे में कराना जरूरी होता है।
1: ओके, ये एक बहुत ही आम गलत फहमी है। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड पेशेंट जो है वो यही समझते हैं कि स्केलिंग से दांत वीक हो जाते हैं।
0: सही।
1: तो ये बिल्कुल गलत है। स्केलिंग क्या होता है, इट्स जस्ट के एक दांतों की सफाई जो प्रोफेशनली क्लिनिक में की जाती है।
0: सही।
1: और उसमें हम क्या करते हैं कि दांतों पे जमी हुई मैल जब हार्डन हो जाती है, हम उसको टार्टर कहते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं और उसके साथ साथ मुंह में जो बैक्टीरिया होता है वो भी क्लियर आउट हो जाता है। अगर इस मैल को लंबे अरसे तक लगा रहने दें तो मसूड़ों के मुख्तलिफ मसाइल शुरू हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आना, सूजन होना, पीप होना और आखिरकार दांत हिलने भी लग जाते हैं। सो अगर आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप स्केलिंग करवा लें, आप परेशान ना हो, ठीक है, ये आपकी मसूड़ और दांतों की सेहत को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है।
0: ओके अच्छा, साथ में हम अगर बात करें कि दांतों को ब्रश करना जोर जोर से, अक्सर कहा जाता है कि आपने एक तो ब्रश जो है वो दांतों के लिए सॉफ्ट सा लेना होता है, मतलब ज्यादा हार्ड ब्रशिंग जो है वो भी दांतों को और आपके मसूड़ों को, आपके गम्स को जो है नुकसान देती है। तो कितने परसेंट ये चीज जो है वो ट्रू है कि ज्यादा यू नो हार्ड तरीके से ब्रश करना जो है वो दांतों को और मसूड़ों को खराब करता है, मसूड़ों की सेहत को खराब करता है, इस हवाले से बताएं।
1: नहीं, ये बिल्कुल सही है। जोर जोर से ब्रश करना जो है उसका ये मतलब नहीं है कि आपके दांत ज्यादा साफ हो रहे हैं, इनफैक्ट उल्टा ही असर हो रहा होता है, दांत डैमेज हो जाते हैं। दांत की जो सबसे मजबूत तरीन सतह होती है एनामल, वो इस तरह से घिस जाती है, पतली हो जाती है।
0: सही।
1: और मसूड़ों पे भी असर होता है, जैसे आप कह रही हैं मसूड़े अपनी जगह से पीछे हट जाते हैं एंड इनकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल शुरू हो जाते हैं, जैसे दांत पीले हो जाते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, या हसास हो जाते हैं, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है।
0: सही।
1: सो जो सही तरीका यही है कि आप नरम टूथब्रश से टूथब्रशिंग करें, एक नरम हाथ से, सॉफ्ट हैंड से टूथब्रश करें तकरीबन 2 मिनट के लिए एवरी टाइम।
0: सही। अच्छा, ये मतलब 2 मिनट जो एग्जैक्ट टाइम ऐसा होना चाहिए?
1: जी, तकरीबन 2 मिनट
0: इतना तो होना चाहिए।
1: दैट्स रिकमेंडेड।
0: मोस्टली लोग जो है वो क्या करते हैं डॉक्टर साहिबा, कि जल्दी जल्दी ब्रश किया,
1: एग्जैक्टली
0: दे डोंट क्लीन देयर टीथ प्रॉपरली। और जिसमें अच्छा एक होता है ब्रशिंग पोजिशन, तो वो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि मोस्टली लोग बस ये कहते हैं ऐसे ऐसे बस दांत साफ की, चलो भाई दांत साफ हो गया खत्म।
1: नहीं, देखिए आपने सर्क्यूलर मूवमेंट्स में जाना है,
0: ठीक है,
1: ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू दी अदर एंड आपने दांतों की जो तमाम सर्फेसिज हैं यू हैव टू कवर दोज, आगे की, पीछे की, साइड की, वो सारी आप कवर करें विद टूथ ब्रशिंग, इट विल टेक यू 2 मिनट्स टू डू इट प्रॉपरली।
0: सही।
1: और जो इन बिटवीन स्पेसेज हैं जैसे हमने पहले बताया है, आप फ्लॉस करें।
0: सही। जहां पे ब्रश जो है प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है वहां के लिए फ्लॉसिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसी के साथ साथ जो है हम अपने लिस्टर्स को बताते चलें कि आप एफएम 100 पे प्रोग्राम सुन रहे हैं ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मास्यूटिकल्स के साथ, और इसी के साथ साथ डॉक्टर अमीना ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। एंड अगला सवाल जो हम डॉक्टर साहिबा से करेंगे, इट्स अबाउट के सिर्फ एक शुगर मीठा खाना यानी शुगरी फूड अगर यही एक रीजन होता है कैविटी का, या बहुत सी और भी चीजें हैं जो दांतों में कैविटी का सबब बनती हैं, और अगर वो है तो वो ऐसे क्या फूड है, ऐसी क्या चीजें हैं, कौन सी खाने की चीजें हैं जो दांतों में सबसे ज्यादा कैविटी का सबब बनती है?
1: शुगर जो है मीठा डेफिनेटली सबसे बड़ा कल्प्रिट है, सबसे बड़ा कॉज है ऑफ कैविटीज, तो ये तो बात है. लेकिन इसके साथ थोड़ी सी और भी वजूहात हैं जो कैविटीज बनाने में बड़ा किरदार अदा करती हैं. फॉर एग्जांपल, आप मीठा दिन में कब कब खा रहे हैं? तो जो लोग कई लोग मुसलसल दिन भर कुछ ना कुछ स्नैकिंग करते रहते हैं, खाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं जिसमें चीनी होती है, या बिस्किट खा रहे हैं, या कभी कोई चॉकलेट खा रहे हैं, तो इस तरह से आपके दांतों को दिन भर जो है शुगर का एक्सपोजर मिलता रहता है. और मुंह का बैक्टीरिया शुगर को एसिड में तब्दील करता है जो दांत को घुला देता है और कैविटीज बन जाती हैं. द सेकेंड फैक्टर इज कि आप किस तरह का मीठा खा रहे हैं. तो जो चिकना और चिपकने वाला मीठा होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है. यानी कि जैसे टॉफीज जो दांतों पे चिपकी रहे, या लॉलीपॉप जो बच्चे खाते हैं वो काफी अरसे तक वो उसी को खाते रहते हैं, वो लंबे अरसे तक मुंह में रहता है, तो फिर अगेन दांतों का जो एक्सपोजर है वो बढ़ जाता है.
0: सही.
1: एंड लास्टली यही होगा कि आप अगर अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं कर रहे और आप उनकी क्लीनिंग ठीक नहीं कर रहे तो आपकी कैविटीज के चांसेस जो हैं फिर वो बढ़ जाएंगे,
0: ज्यादा हो जाएंगे. अच्छा, चाय के हवाले से आपने बात की, तो चाय मतलब किस तरीके से नुकसानदेह हो सकती है?
1: चाय इसलिए क्योंकि उसमें एक तो अगर आप चीनी डाल के पी रहे हैं तो दैट्स द शुगर कंटेंट. इवन मिल्क, क्योंकि वो जो है एसिड जो है टूट के जो है अपने टीथ को जो है घुला देता है.
0: सही.
1: एंड दैट इज व्हाट कॉजेज कैविटीज.
0: ओके. अच्छा, चाय के हवाले से आपने बात की है, ये भी सुना है कि चाय, गरम चाय जैसे आपने पी ली है उसके बाद आप पानी पियो तो दांत जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, इज इट ट्रू? ये सच
1: नहीं, गिरना तो शुरू नहीं हो जाते,
0: हो जाते हैं, हिलना शुरू हो जाते हैं.
1: हिलना शुरू तो नहीं हो जाते, बट डेफिनेटली इफ अगर आप गरम और ठंडा को कॉन्स्टेंटली ऐसे ऑल्टरनेट करेंगे तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर टीथ एंड द इनेमल, तो दांत हसास तो डेफिनेटली हो जाएंगे.
0: सही सही. अच्छा, एक तो होता है कि लोगों को बहुत इस चीज का एक क्रेज होता है कि दांत जो हैं वो साफ होने चाहिए, व्हाइट होने चाहिए, कि आप स्माइल करते हुए अच्छे लगें. तो ऑफनली दांतों की क्लीनिंग कराना कितना जरूरी है डेंटिस्ट के पास जाके, और मतलब हमें कितनी दफा जो है जाके चेकअप कराना चाहिए? क्योंकि मोस्टली जो है नहीं जा पा रहे होते हैं, डेंटिस्ट को नहीं दिखा रहे होते हैं, या अगर कोई और भी मसला होता है दांतों के दर्द का तो नॉर्मली हम जो है पेन किलर्स वगैरह लेके उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं. तो कितना ऑफनली जाना जरूरी होता है कि हम साल में एटलीस्ट कितनी दफा डेंटिस्ट को दिखाएं और अपनी मतलब क्लीनिंग वगैरह दांतों की कराएं?
1: देखिए, जो अगर आपने अपने दांतों को बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखना है, जो रेकमेंडेड है कि आप एवरी सिक्स मंथ्स यानी कि साल में दो दफा अपने डेंटिस्ट को विजिट करें.
0: ठीक है.
1: और इसके साथ एक 222 का रूल है, असूल है जो हम फॉलो करते हैं. अगर आप अपने दांतों को टॉप क्वालिटी में मेंटेन करना चाहते हैं और अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और वो ये है कि सबसे पहले यू नो द फर्स्ट इज दैट आपने दिन में दो दफा टूथ ब्रशिंग करनी है. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज तकरीबन दो मिनट के लिए. एंड थर्ड वन इज साल में दो दफा डेंटिस्ट को विजिट. सो इफ यू फॉलो दिस 222 असूल यू कैन कीप योर टीथ एंड टॉप क्वालिटी.
0: ओके. अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में ये भी बताइए कि जो ओरल कैंसर होता है, इज इट कंटेजियस एंड इसके रीजंस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? कुछ लोगों के साथ होता ये है सिचुएशन में कि माउथ अल्सर्स उनको स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं जो अर्ली सिम्टम्स में, जहां तक मुझे पता है कि ऐसा होता है कि आपको आपके जो माउथ अल्सर्स होते हैं वो ठीक नहीं हो रहे होते. सही. तो साथ में ये भी बताएं कि हमारे लिसनर्स किस स्टेज पे जाके इस चीज को मतलब एक यू नो सीरियस लेना चाहिए कि अब जाके हमने डेंटिस्ट को दिखाना है, या खुदा न खास्ते माउथ अल्सर जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, सवाल से बताएं.
1: जी देखिए, ओरल कैंसर जो है इट्स नॉट कंटेजियस, यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स को ये नहीं लग सकता. एक साथ खाना खाने से नहीं लग सकता, एक साथ रहने से नहीं लग सकता, बोसा देने से भी नहीं लग सकता. اورل کینسر کے جو وجوہات ہیں وہ کمپلیٹلی الگ ہیں، جیسے کہ تباکو نوشی، پان، چھالیا، گٹکا، نسوار کا استعمال، الکوہل کا استعمال، سو یہ بالکل بھی جو ہے کنٹیجس نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے دوسرا جو کوشچن پوچھا تھا کہ منہ میں جب چھالے ہوتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ چند دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ اتنی کوئی سیریس چیز نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات اگر کوئی ایسا چھالا آپ کے منہ میں ہے یا زخم ہے جو 3 ہفتے تک ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نوٹس کر رہے ہیں کوئی غیر معمولی سویلنگ ہے، خون آ رہا ہے، اس کی سائز یا کلر میں چینج آ رہا ہے، تو پھر اس صورتحال میں آپ اس کو اگنور نہ کریں، آپ پھر اپنے ڈینٹسٹ کو فوراً وزٹ کریں، کیونکہ کبھی کبھار مزید تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی اسپیشلسٹ کے پاس ریفرل کرنے کے لیے.
0: صحیح. اچھا، اگر ہم اورل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کرنی چاہیے دانتوں کی صحت کے حوالے سے؟
1: اچھا، another important تھنگ از دیٹ ٹوتھ برشنگ کے بعد اکثر لوگ جو ہیں وہ فوراً کلی کر لیتے ہیں. تو ہاں، یہ بڑی کامن سی چیز ہوتی ہے برش کی اور کلی کی، مگر اس میں ہوتا کیا ہے کہ ٹوتھ برش کے اندر جو فائدہ مند اجزاء ہوتے ہیں جیسے کہ فلورائڈ جو آپ کے دانتوں کو کیویٹی سے محفوظ بناتا ہے، دانت کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، اور بھی مختلف اجزاء ہوتے ہیں ٹوتھ پیسٹ میں جو فائدہ مند ہوتے ہیں، وہ ایک دم ہی سارے دھل جاتے ہیں تو کوئی اثر ہی نہیں آتا آپ کا، جو آپ نے ٹوتھ پیسٹ یوز کیا ہے اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. سو دیئر فور ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آفٹر ٹوتھ برشنگ آپ جو جھاگ ہے وہ تھوک دیں، بٹ ڈونٹ رینس، کلی نہ کریں.
0: اوکے، مطلب اچھا، یہ مطلب ایک چیز پتا چلی ہے کہ آپ جیسے برش کریں تو آپ رینس نہیں کریں.
1: یس، آپ تھوک دیں جو جھاگ ہے، ٹھیک ہے، تھوک دیں، بٹ کلی نہ کریں، کیونکہ لیٹ دا فلورائڈ اور ٹوتھ پیسٹ کے جو سارے کانٹینٹس ہیں، جو فائدہ مند کانٹینٹس ہیں، وہ اپنا اثر تو کریں نا آپ کے دانتوں.
0: اوکے، سو آلموسٹ کتنی دیر تک یہ چیز رکھنی چاہیے؟
1: بس 10 منٹس تک، وہ خود ہی جذب ہو جاتا ہے، اٹس ناٹ انکمفرٹیبل.
0: اوکے. سو ہاں، موسٹلی تو ہمارے روٹین میں یہی شامل ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے برش کیا سیدھا ہم نے فوراً سے وہ کلی کی، تو یہ کبھی تو ایسے ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ کبھی رکھا نہیں. ایک امپورٹنٹ بات پتا چلی ہے یہ. اوکے، سو اچھا ڈاکٹر صاحبہ، موسٹلی ہوتا ہے کہ لوگ اکثر جو ہے میٹھا کھا کر سو جاتے ہیں، صحیح ہے، وچ از ویری بیڈ ہیبٹ. تو اس چیز کو کتنا اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ان کیس جیسے بچے، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو میٹھا کھا کر لازمی سو ہی جاتے ہیں، وہ اتنا نہیں کرتے خیال، اور پیرنٹس بھی کبھی کبھار اس چیز پہ غور نہیں کرتے، کبھی چلو بھائی کھلایا میٹھا اور سلا دیا. تو اس چیز کو ایک طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اگر ان کیس نہیں برش کیا جا رہا ہے یا اس چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو پھر دانتوں کو کیسے بچایا جائے؟
1: تو دیکھیں، وہ جو ٹوائس اے ڈے ٹوتھ برشنگ جو ہے نا، صبح کے ٹائم اینڈ رات کے ٹائم، ان دونوں میں سے دا نائٹ ٹائم ٹوتھ برشنگ از ایکچولی دا موسٹ امپورٹنٹ ون. اس کی وجہ یہ ہے کہ دن بھر کا جو کھانا کھایا ہوتا ہے وہ آپ کے دانتوں پہ لگا ہوا ہے، اینڈ اف یو آر ناٹ برشنگ، آپ نہیں کلین کرے، تو پھر لازمی ہی کسی پوائنٹ پہ آپ کو کیویٹیز اور مختلف ڈینٹل پرابلم ہوں گے. تو جو نائٹ ٹائم ٹوتھ برشنگ ہے اس پہ تو آپ کو واقعی بہت زیادہ اسٹریس کرنا ہے فار چلڈرن اینڈ آلسو ایڈلٹس. کئی بچے ہوتے ہیں، آپ ان کو سپروائز کر لیں اف دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ، ان کی ہیلپ کر دیں.
0: صحیح.
1: جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جو مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں اور ان کے منہ میں شاید ایک یا دو دانت ہوں، چند دانت ہوں دودھ کے دانت، تو ان دانتوں کو بھی صاف رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بیبیز کو بھی بہت تکلیف دہ ڈینٹل پرابلم ہو جاتی. تو اس میں آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ کلین کپڑا، ململ کا کپڑا یا کلین کاٹن سے، ویٹ کاٹن سے آپ دانتوں کو وائپ کر دیں، دیٹس اٹ، شوڈ بی گڈ انف.
0: صحیح. اوکے، ساتھ میں یہ بھی بتائیے، روٹ کنال کے پروسیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، اب تو خیر اس چیز کو بڑا آسان طریقے سے بنا دیا گیا ہے اور اتنا پینفل اب ہوتا نہیں ہے، تو روٹ کنال کا جو ایک خوف لوگوں کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا لسنرز کو بتائیں کہ وائی دس پروسیس از نیسسری، ضروری بھی ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور کب کرانا چاہیے، اور اس کے بعد کی احتیاطیں کیا ہوتی ہیں؟
1: تو روٹ کینال پروسیس وہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اگر دانت میں کیڑا لگ جائے،
0: صحیح،
1: لیکن آپ نے بہت عرصے سے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، آپ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جا رہے، تو وہ کیڑا جو ہے نا بہت دانت کے جو اندرونی اسٹرکچر میں ڈیپ چلا جاتا ہے.
0: اوکے،
1: تو اگر کیڑا جو ہے نرس تک پہنچ جائے، तो फिर हम जो है दांत को फिलिंग से ट्रीट नहीं करते, तो उस टाइम पे हम रूट कैनाल करते हैं.
0: सही.
1: एंड एट दैट टाइम अगर आपने दांत को बचाना है तो रूट कैनाल जो है वो नेसेसरी ही हो जाता है. इसमें यह है कि अब आजकल जो है रूट कैनाल इतना पेनफुल नहीं होता, क्योंकि हम सुन करके काम करते हैं और एनेस्थीसिया काफी इफेक्टिव होता है.
0: ओके.
1: तो आई थिंक ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट की गई है कि रूट कैनाल इज सो पेनफुल. इट्स नॉट. अगर आप किसी अच्छे डेंटिस्ट को विजिट कर रहे हैं और आपने दांत को जो है अच्छी तरह से सुन किया जाए तो इट्स नॉट अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर.
0: सही. अच्छा, जैसे नॉर्मली दांतों में दर्द हो रहा होता है तो हम अक्सर होम रेमेडीज यूज कर लेते हैं. अब जैसे एक टिप मैं अगर बताऊं कि दांत में जैसे दर्द है, दाढ़ जिसे हम बोलते हैं उसमें दर्द है, तो थोड़ी देर के लिए आप लौंग रख लें तो उससे जो है वो अच्छा. मैंने वो खुद भी, क्योंकि मैंने इस्तेमाल की हुई है ये टिप, तो इसलिए मुझे पता है कि फायदा बिल्कुल करती है. अगर आप लौंग रख लेते हैं तो दर्द थोड़ा बेहतर हो जाता है. तो इस तरह की ऐसी कौन सी नेचुरल रेमेडीज हैं, होम रेमेडीज हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं दांतों के दर्द के लिए, या कोई ऐसा दांतों का इश्यू हो तो इसमें कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडीज हैं जो बहुत इफेक्टिव होती हैं?
1: अच्छा, फॉर होम रेमेडीज एज ए डेंटिस्ट मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप होम रेमेडीज का इस्तेमाल करें.
0: ठीक है.
1: क्योंकि ये हो सकता है कि वक्ती तौर पे आपको आराम आ जाए, लेकिन दांत में जो इन्फेक्शन है वो खत्म नहीं हो सकता विद द होम रेमेडीज. तो बहुत से लोग जैसे आप कह रहे हैं लौंग रख देते हैं और मुख्तलिफ होम रेमेडीज जो है वो यूज करते हैं, मगर उसमें अक्सर ये भी होता है कि जो मसला होता है वो और ज्यादा बिगड़ जाता है और ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. तो आई ऑलवेज एडवाइज कि आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें एंड डॉक्टर के जो मशवरे के मुताबिक मेडिसिन लें या जो भी ट्रीटमेंट वो एडवाइस करें वो लें. क्योंकि हमेशा ये याद रखें जो बर वक्त इलाज होता है वो तकलीफ दे भी कम होता है और कम खर्च भी होता है, बजाय इसके कि यू वेट और एक बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाए.
0: बिल्कुल. ये बात आपने बहुत जबरदस्त की है. अच्छा, अब सबसे मेजर इश्यू पे आते हैं. वैसे तो हम जो बात करें वो ऑब्वियसली सारी प्रॉपर एक कॉमन इश्यूज हैं दांतों के. दांतों में ठंडा गर्म रखना, यानी जो दांतों की सेंसिटिविटी होती है, इसका क्या रीजन होता है कि हमारे दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है इतनी ज्यादा कि हमें दांतों में ठंडा गर्म, कुछ लोगों को मीठा बहुत ज्यादा, अच्छा मीठा भी दांतों में लगता है. तो इसके क्या कॉजेज होते हैं, किस वजह से ये जो है दांतों की कोई ऐसी लेयर खत्म हो जाती है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है दांतों की?
1: बिल्कुल, ये जो है वो हार्ड टूथ ब्रशिंग या जोर जोर से ताकत लगा लगा के टूथब्रश करने से डेफिनेटली जो दांतों की जो सबसे मजबूत तरीन सतह होती है एनामल वो पतली हो जाती है, घिस जाती है, जिससे दांत जो है सेंसिटिव हो जाते हैं. इसके अलावा कोई और समटाइम्स मेडिकल प्रॉब्लम भी होती है. पेशेंट्स को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें उनको जो है रिगर्जिटेशन होती है, इसकी वजह से दांतों की सर्फेसिस घुल जाती हैं, पतली हो जाती हैं.
0: ठीक है.
1: और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है.
0: सही.
1: सो एंड दूसरी रिकॉज ये है कि अगर आपने दांतों की सफाई जो है अच्छी तरह से मेंटेन नहीं की और मसूड़े जो हैं वो अपनी जगह से नीचे हट गए हैं तो वो भी एक सेंसिटिविटी की कॉज बन जाती है.
0: सही. और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है?
1: ट्रीटमेंट तो यही है कि आपने सही तरीके से टूथब्रश करना है.
0: सही है.
1: अपनी ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करनी है ताकि मसूड़े जो हैं वो सेहतमंद रहें, वो अपनी जगह उसी पॉइंट पे रहें जो कुदरती है. दिस इज द ट्रीटमेंट. एंड इसके अलावा जो है डॉक्टर्स आपको सेंसिटिविटी के लिए जो है माउथ वॉश प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, विच कैन मेक इट बेटर.
0: ओके. और अगर हम बात करें अबाउट द वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स फॉर टीथ जो अक्सर लोग कराते हैं, तो कराना सही रहता है ये वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स कराना?
1: बिल्कुल, इट्स नॉट हार्मफुल. जो प्रोफेशनल डेंटल क्लिनिक्स में की जाती हैं वो हार्मफुल नहीं होती, आप करवा सकते हैं. उनकी एक लाइफ स्पैन होती है, दे डोंट लास्ट फॉर एवर.
0: ओके.
1: तो इट डिपेंड्स ऑन आपकी हैबिट्स क्या हैं. आप अगर बहुत ज्यादा तंबाकू नोशी कर रहे हैं तो फिर, या बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं एक दिन में, तो फिर वो शायद रिजल्ट ज्यादा ना चले. तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप उसको रिपीट भी करवा सकते हैं, दोबारा करवा सकते हैं.
0: सही. अच्छा, एक मेन जैसे दांतों का मसला होता है अबाउट कोई हार्ड चीज जो है आप नहीं खा सकते, दांतों की कोई ऐसी चीज सेंसिटिव हो जाती है जो हार्ड चीज जो है वो बाइट नहीं होती, इसके क्या कॉजेज होते हैं डॉक्टर साहब?
1: नहीं ऐसा तो ऐसा सच होता नहीं है. इफ यू अगर आई मीन मैं तो एडवाइस करूंगी कि आप हार्ड चीजें खाएं, इट्स मोर बेटर फॉर योर मसल्स एंड योर टीथ. खासतौर पे जो बच्चे होते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन, उनको आप हार्ड जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दें कि वो बाइट करें ताकि उनके मसल्स स्ट्रांग डेवलप हो. अगर आप कॉन्स्टेंटली सॉफ्ट ही खाना खाएंगे तो आपके जो जॉस के मसल्स हैं वो भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होंगे,
0: वीक हो जाते हैं. क्योंकि मोस्टली लोगों का ये भी सोचना होता होगा कि ज्यादा अगर हम हार्ड चीज खाएंगे तो दांतों को वो वीक करता है. और जैसे जैसे एप्पल एक होता है, अगर आप एप्पल को काटने के बजाय अगर आप उसको साबुत तरीके से खाएं तो वो दांतों की हेल्थ के लिए अच्छा, वो मजबूत करेगा, मसल्स को स्ट्रांग करेगा. और जैसे गाजर होती है, वो भी एक हार्ड चीज होती है, तो आप उसको इस तरीके से प्रॉपर खा सकते हैं. दांतों की एक्सरसाइज बेसिकली जैसे हम कहते हैं, जिससे गम्स भी स्ट्रांग होंगे और दांत भी स्ट्रांग होंगे. साथ में डॉक्टर साहब ये बताएं कि अक्सर लोग जो है वो दांतों को ऑब्वियसली जिनके दांत टेढ़े होते हैं तो उसको प्रॉपर अलाइन करने के लिए अलाइनर्स वगैरह यूज करते हैं, ब्रेसेस यूज करते हैं, तो इसका जो है दांतों की हेल्थ पे क्या असर होता है और किस तरीके से ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए?
1: नहीं, ये बहुत फायदेमंद है, ये तो बहुत एक अच्छी चीज है. अगर आपके पास एक्सेस है, आपके पास एबिलिटी है कि आप अलाइनर्स या ब्रेसेस करवाएं, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप 100% करवाएं. खास तौर पे फॉर प्रोफेशनल्स एंड चिल्ड्रन की एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काफी ज्यादा असर पड़ता है, मुस्कुराहट और दांतों की अलाइनमेंट. क्योंकि लॉट ऑफ चिल्ड्रन गेट बुलीड इन स्कूल, इन यूनिवर्सिटीज, तो आजकल तो लोग बहुत कॉन्शियस हो गए. अलाइनर्स एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, मैं तो रिकमेंड करती हूँ फॉर एडल्ट्स और प्रोफेशनल्स जिन्होंने ब्रेसेस नहीं करवाई, क्योंकि ये एक इनविजिबल तरीका है जिससे आप अपने दांतों को सीधा करवा सकते हैं.
0: सही सही. अच्छा, इसी के साथ साथ बात करेंगे विजडम टूथ के हवाले से. अकल डार निकलवाना जरूरी होता है, किस स्टेज पे आके निकलवाना चाहिए, और अगर इनकेस नहीं निकलवाई जाए तो ये किस हद तक जो है वो परेशान कर सकती है?
1: अच्छा, अकल दाड़ को निकलवाना बिल्कुल जरूरी नहीं होता.
0: सही.
1: अगर आपको अकल दाड़ में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है या पेन हो रहा है, उस टाइम पे ही सिर्फ हम इसको रिमूव करते हैं.
0: सही.
1: अननेसेसरीली निकालने की कोई जरूरत नहीं है. इफ इट्स नॉट कॉजिंग यू एनी पेन, आप इसको रहने दीजिए, इसमें कोई मसला नहीं है. और कोई इसमें एज ग्रुप भी नहीं है कि आपको फलाने एज तक इसको निकलवानी है. जब दांत में प्रॉब्लम हो या जब इन्फेक्शन हो तभी उसको उस टाइम पे हम ट्रीट कर सकते हैं, एट एनी एज.
0: सही. मतलब नॉर्मली जो है इसका इतना नहीं है कि ये इतना ज्यादा पेनफुल है या तकलीफ दे रही है, डिपेंड्स के सिचुएशन क्या है.
1: जब दांत निकल रहा होता है कई लोगों को पेन होती है.
0: सही.
1: बट वंस द टूथ इज फुली अरप्टेड मुंह में है, तो अगर आपको कोई दर्द नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो उसको टच करना अननेसेसरीली इसकी कोई जरूरत नहीं है.
0: सही सही. अच्छा, आप हमारे लिसनर्स को क्या एडवाइस करेंगी, नॉर्मली रूटीन में जो है वो दांतों की सेहत को हम किस तरीके से लेके चल सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रूटीन में क्या शामिल कर सकते हैं, लिसनर्स को बताइए हमारे.
1: अच्छा, आई थिंक द बेस्ट एडवाइस मैं ये दे सकती हूँ इज दैट कि आप अपने दांतों और मसूड़ों की सेहत को मेंटेन करने के लिए आप अपनी ओरल हाइजीन यानी मुंह की सफाई को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करें. उसमें जैसे हमने आपको बताया कि दिन में 2 दफा टूथब्रशिंग, सुबह को और रात को. रात की टूथब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्किप ना करें. और दिन में 1 दफा फ्लॉसिंग. अगर आप सिर्फ ये रूटीन रख लें और साल में 2 दफा अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, अपनी डेंटल स्केलिंग करवाएं, आई थिंक आपको 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स से जो है वो निजात मिल जाएगी.
0: और मीठा अवॉइड करें.
1: मीठा जो है उसके लिए आप एक मखसूस वक्त मुकर्रर कर लें. दिन भर मीठा ना खाएं. मीठा भी आप खा सकते हैं इन समझदारी से, अगर आप खाएंगे तो आपको उसका फिर उस हिसाब से.
0: मोस्टली रात में कहा जाता है कि रात में मीठा खाकर ना सोएं, क्योंकि वो दांतों के लिए ज्यादा नुकसानदेह होता है.
1: नहीं, कोई भी टाइम आप रख लें. रात को अगर आप मीठा खा रहे हैं तो टूथब्रश करके सो जाएं.
0: सही है.
1: बजाय इसके कि दिन भर स्नैकिंग, डोंट डू दैट, बस एक मखसूस वक्त मुकर्र करते हैं और उसके बाद टूथब्रश करके आप सो जाइए.
0: क्योंकि मोस्टली लोगों की आदत थोड़ी होती है कि चलो यार यू नो टाइमली वो मीठा खा रहे होते हैं, जैसे सुबह खा लिया चलो थोड़ा थोड़ा दोपहर में खा लिया थोड़ा शाम में थोड़ा रात में, स्नैकिंग मीठे की चल रही होती है. तो इसको थोड़ा अवॉइड करना जरूरी होता है क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा मीठा खाना भी जो है वो दांतों के लिए नुकसानदेह होता है, कैविटी का बायस बनता है और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनता है. ओके, सो हम अपने लिसनर्स को बताते चले कि आप सुन रहे थे प्रोग्राम ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ, सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी. सो आज हमने दांतों की सेहत के हवाले से डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवाल किए और दांतों को किस तरीके से हेल्दी रखा जा सकता है, दांतों का ख्याल किस तरीके से किया जा सकता है, रूटीन में हम ऐसी क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं जो दांतों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. क्योंकि ऑब्वियसली सेहतमंद दांत होंगे तो जिंदगी भी सेहतमंद होगी, क्योंकि जाहिर है हमारा खाना पीना हमारे मुंह से होता है और जब हमारा दांत जो है वो काम नहीं करेंगे तो प्रॉपर खाना पीना हम कैसे करेंगे. सो इसी बात के साथ आप लोगों से चाहेंगे इजाजत. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग हियर एंड फॉर प्रोवाइडिंग दिस वंडरफुल नॉलेज टू अस एंड टू आवर लिसनर्स. एंड आप लोगों से इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जो है हम मुलाकात करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर्स एंड अल्लाह हाफिज़.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimabad. Across the nation.
1: This is
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
4: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया। अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
8: FM 247365।
9: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल

0: आप पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: कूल किंग चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी। अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: This is FM 100.
3: DJ mixing the beats. Beats.
4: Mixing the beats.
5: 24 hours.
6: FM 100.
7: Number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine.

Hello, hello, hello everyone, and assalamu alaikum to all of you guys. Are tuned into FM 100 Pakistan, and the show is called Genie in our radio. My name is Jasmine. So guys, today is Wednesday, 8th of July, 2026. Aap sunoge our show. Aap logo batate chale, it's a request-based show. Aap log request kar sakte hain for your favorite tracks. तरीकेकार बहुत ही आसान है, जिस टाइप के है शायद अनलीव स्पेस, आपका मैसेज, आपका नाम, आपकी रिक्वेस्ट और 3636 पर भेजना है. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो. मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. हमारे साथ रहिएगा, मैसेजेस करते रहिए अपनी रिक्वेस्ट के साथ 3636 पर, और चाहे तो facebook.com/archer.jasmine पे आप वहां पर भी हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, एंड यू कैन रिक्वेस्ट फॉर योर फेवरेट ट्रैक. Okay, so right now we are moving on towards the first track of the show. Milte hain aapse is gaane ke baad. Hamare saath rahiyega.

Acha. That we come to run things on the road. See? This one I'm

0: Alrighty guys, welcome back. Afternoon FM 100 Pakistan. The show is called Genie in our radio. My name is Jasmine. So guys, आप लोग हमें messages कर रहे हैं 3636 पर और साथ में मैं आप लोग को बताते चलूँ कि आप लोग जो हैं हमें facebook.com/rz.jasmine वहाँ पे भी आप लोग हमें messages कर रहे हैं. And you can request for your favorite tracks over there. And अगर आप चाहें तो 3636 पर भी मैसेज कर सकते हैं. हमारे पास मैसेज आया है नूर का. वालेकुम अस्सलाम नूर, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं. And she has requested for the song called Blockbuster. ठीक हो गया है, जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड जरी नूर ने मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम. बस यार तबीयत थोड़ी सी ऑफ है जस्ट बिकॉज ऑफ द वायरल जो बड़ा बुरे तरीके से फैला हुआ है, फ्लू और खांसी, गला खराब. और थैंक यू सो मच, इन्होंने लिखा बहुत सारी दुआएं और प्यार आपके लिए, बहुत शुक्रिया, सो स्वीट ऑफ यू. अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिएगा और क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट नूर की भी आई और पेज पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं भी इंक्लूड करती हूँ थोड़ी सी देर में. स्टे ट्यून्ड.
1: Let your fingers do the talking. SMS now on 3636.
2: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से. पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365.
7: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine.

your fingers. Do the talking. SMS now on 3636.

0: Alrighty, Janelle, welcome back. So you're listening to Janina Radio. My name is Jasmine. आप लोग हमें messages कर रहे हैं 3636 पर. तरीके कार बहुत ही आसान है. Just type KHY then leave space. आपका message, आपका नाम, आपकी request और 3636 पर भेजना है. Okay, so आप लोग हमें messages कर रहे हैं 3636 पर. And meanwhile, we are moving on towards a short little break. Milte hain aapse ek choti si break ke baad. Hamare saath rahiye, stay tuned.
1: We will take a short commercial break.
2: Access the sound generator. FM 100. This is your music.

0: Genie. Genie in radio. Radio.
1: Alrighty, so now welcome back. So हमारे पास जरीन नूर का मैसेज आया था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, सजाद अली का सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, तेरा नाम, तो जरूर प्ले कर देंगे अभी. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके, जरीन नूर ने लिखा है आपका शो बहुत अच्छा होता है, आप बोलती बहुत अच्छा है. अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. दिल करता है आपकी आवाज सुनती रहूं यार, दैट्स सो स्वीट. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का जरिए. ओके, सो हमारे पास हिबा का मैसेज आया था. हिबा ने रिक्वेस्ट किया था इजाजत बाय बिलाल से. सो हिबा, इफ यू आर लिसनिंग, आई एम मूविंग ऑन टूवर्ड्स योर सॉन्ग. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: It's not what you play, it's how you play it. FM 100.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
4: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
6: Genie in radio.
7: Okay, so now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan, and abhi main aapko bata dun ki abhi hum show ko wind up karenge aur inshallah aapse kal mulaqat karenge. 2 to 4 सुनना नहीं भूलिएगा. facebook.com/rj.jasmine पे भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं एंड यू कैन गिव अस योर कमेंट्स. और माशाल्लाह बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं हमारे पास. जयपाल थैंक यू सो मच, रूमा थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, शाहिद थैंक यू, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया. एंड शेरोज थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. लारेब थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, बहुत शुक्रिया. आज हम जिनकी रिक्वेस्ट इंक्लूड नहीं कर सके कल डेफिनेटली प्ले करेंगे, प्लीज नाराज नहीं हुएगा. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टेक्स्ट सेंडर्स आउट देयर जिन्होंने शो पे पार्टिसिपेट किया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे. facebook.com/rj.jasmine पे आप बिल्कुल हमें एक तो अपनी रिक्वेस्ट जो है फुलफिल करवा सकते हैं, आप मुझे भेज दीजिएगा, कल डेफिनेटली प्ले करेंगे. अभी आप लोगों से चाहेंगे इजाजत. लिविंग यू विद द लास्ट ट्रैक तेरा नाम बाय सज्जाद अली, जरीन नूर ने रिक्वेस्ट किया था. और इसी के साथ साथ इट विल बी फॉलोड बाय द ओएसटी ऑफ बदगुमान विच वाज रिक्वेस्टेड बाय रोमा. सो टिल देन अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल. टेक केयर्स एंड अल्लाह हाफिज़.

0: थिंकिंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिप टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. It's 24 hours, non-stop vibration. Connecting you.
5: Connecting.
4: Holding you.
5: Holding.
4: With FM 100.
6: FM 100. FM 100.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365
4: FM247365 Back to back, back to back. Only music, no art to talk.
5: Only music, no art to talk.
4: This is FM.

0: Your location for maximum music.
1: In the rhythm of life, rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on. The music plays on. The music plays on.
2: FM 100's time check. It's 5 p.m.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
4: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
5: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: This program is brought to you by
1: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
0: And
2: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
3: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे. होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7/365

0: के क्लाउड बिल की आवाज़ है
1: और ये आवाज़ उसके पैसे वापस आने की है।
0: पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स AI, SaaS,
2: फिनटेक,
0: हेल्थटेक। इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
3: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹5,000 डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर.
3: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
4: डेली लो फिट रहो.
0: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: कूल किंग हेयर ऑयल. जैसे चलता फिरता एसी.
7: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
1: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
8: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
9: हमने अपने आप को 3 बार मौत देखा.
10: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
11: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया.
8: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
12: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
8: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़राए इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें. ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें. हुकूमत पाकिस्तान.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
13: FM 24/7/365

0: This program is brought to you by
1: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
0: And
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And

0: Like us on Facebook.com/FM247365.
1: FM247365.

0: King. चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
2: महयाना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना.
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500.
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
4: दुनी दो दो दुनी चार.
6: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय JazzCash.
7: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है. मगर अब नहीं, इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स. टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं. आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर. एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है.
8: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
9: आज भी स्कूल डेली लो फिट रहो.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: किसने कहा था पैसे बचा।

0: This program is brought to you by
1: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
0: And अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें. And

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
3: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
4: Agar aap hai in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur 5 year earnings ke saath 2500 se zyada inamat.
3: Duni do do duni chaar.
5: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
6: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
7: Fit raho.
0: This program is brought to you by
8: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
4: And agar aap hai in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le.
0: And
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
9: tufaan hai. Har jeet ki pehchan hai.
0: 100 FM.
10: Hi friends. I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
11: ایف ایم 24/7/365

0: come on.
1: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
2: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
1: And
3: अगर आप हैं इंड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
1: And
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
5: Cool King.
6: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
7: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
8: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
9: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
10: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर
5: कूल किंग.
8: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: This program is brought to you by Tufaan Hai.
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
4: FM247365
5: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन DNCs को तस्लीम करना है।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईन पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
3: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Cool King.
2: Bijli ka bill dekha. Aankhon ne double check kiya. Phir bhi shock same. Isi baat. लेकिन बीपी हाई
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी
3: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश

0: अगर आप हैं इंड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाए ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: फिट रहो। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय तूफान है, हर जीत की पहचान है। तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
3: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
3: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
4: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
5: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
4: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
3: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں، pta.txt محفوظ ہے لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: This program was brought to you by FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना.
0: 100 FM.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय JazzCash.
0: FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं, मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदाद मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदाद मंशियात।

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बंद।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: This public service message is brought to you by FM 100. ट्रैफिक कवानीन और इशारों की पाबंदी कीजिए, इनकी खिलाफ वर्जी काबिले गिरफ्त जुर्म है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए,

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
1: aur bhul ja. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैस कैश।
2: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
3: बैन अल-अक़वामी सतह पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में एक खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 247365

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात और नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM।
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
5: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए कहें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
7: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
8: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
9: हमारी जिम्मेदारी है।
10: खानदानी मंसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365.
11: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: मैक चेक 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है और कैसे मिजाज है और कैसी तबीयत? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सुन रहे हो तुसी अपना फेवरेट रेडियो चैनल FM 100। थोड़ा सा पंजाबी का तड़का मैंने एमी अपनी तरफ से लगा दिया है क्योंकि आज है वेनसडे और वेनसडे वाले दिन जनाब पंजाबी गाने भी हैं, साथ में कुछ और भी मैंने रख दिए हैं। अरबिक भी एक दो गाने मिल जाएंगे, पश्तो भी हैं और बलूची भी हैं, तो थोड़ा सा जरा। लेकिन ज्यादातर जो गाने हैं वो भैया पंजाबी। फुल मस्त माहौल। मैसेज करने का तरीका बहुत ही सिंपल किया, चाहे स्पेस टेक्स्ट करते हैं, सेंड कर देते हैं 3636 पर। टाइम हो गया है 9:15, 9:50 और इस टाइम पे हम लेते हैं ब्रेक, वो भी छोटी सी, मतलब 3 मिनट की। मिलते हैं 3 मिनट के बाद।
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: Active, yummy,
7: adorable,
6: zabardast.
7: Say I've got a crush on you.
6: Kya pyaar to suno yaar.

जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं फिर 100 और साथ साथ मैसेजेस करेंगे, एचआर स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। बिल्कुल मैसेज मैं शामिल करता हूँ, जरा जमा होने दें, फिर इत्मीनान के साथ मैं आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ। और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए एक खास मैसेज, सुकून इत्मीनान जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। और जना पंजाबी गाने हैं, और पंजाबी वैसे उमन पंजाबी का मैं जिक्र करता हूँ ना तो लोग कहते हैं बस फिर भंगड़े शुरू हो गए, ऐसी बात नहीं। पंजाबी में सैड गाने भी हैं, मेलोडियस ट्रैक भी है, हर तरह का म्यूजिक आपको मिलता है। तो आज मैंने मिक्स या फुल माहौल रखा हुआ है, भंगड़े टाइप के गाने भी हैं और मेलोडियस गाने भी हैं। तो आगाज करेंगे बहुत ही खूबसूरत मेलोडियस ट्रैक से, और वो है कैसे,

है जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं 3636 पर। और जनाब सबसे पहले बिलावल भाई ने मैसेज कर दिया गिजरी से, अयाज भाई आपको और तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है बिलावल भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं कहाँ हैं और क्या मसरूफियत चल रही है। गयासुद्दीन बलबन भी आ गए, गयास क्या हाल है मेरे भाई, ठीक है। वालेकुम सलाम, पूरी टीम को सलाम कह दिया है और कह रहे हैं नहीं क्या काफी तरह गैप डाल डाल के लिखा है पंजाबी सॉन्ग्स, अच्छा पसंद आ गया इनको फुल टाइम। क्या कहने, बस जनाब हर तरह का म्यूजिक, हर तरह का फ्लेवर होना चाहिए शो में, मोनोटोनस ना हो, बस ये कोशिश मैं करता रहता हूँ। और जनाब संजीदा आ गई, मोहतरमा संजीदा कैसी है आप, और बहुत ही प्यार से वेलकम कर दिया आपने और बैकग्राउंड म्यूजिक भी पसंद करती हैं आप। कह रही है आपकी बादशाहत में हम ठीक हैं। भाई कैसा कंगला बादशाह भाई, ना क्या करें यार, आप लोगों की बादशाहत है। और अस्मा भी सुन रही है, अस्मा जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं अस्मा, ठीक हैं भाई। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी जगह पहुंच गई हैं माशाल्लाह, पहले एफएम मंडे आ जाती तो आप पहले ही उस जबरदस्त स्टेशन में पहुंच जाती। चलें जनाब बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, सुन रही हैं आप ये सबसे अच्छी बात है। भाई जनाब नेक्स्ट ट्रैक और वो है कैसे,

0: जी वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी मुश्क। लैला भी आ गई है भाई, क्या बात है लैला। लैला वैसे गाना आज मेरे पास अरबिक है, आप ही को डेडिकेट करूंगा थोड़ी देर तक। तो मुश्क लैला जी क्या हाल है आपके, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम किंग, क्या हाल है आपकी? छुट्टी उदास कर देती है शो का इंतजार, तो मैं बिल्कुल आ जाता हूँ भाई, मैं बिल्कुल आ जाता हूँ, बस जरा कामों में थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है इस वजह से भी। अच्छा बिलावल क्या कह रहे हैं? सर मैं 4 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी गया हुआ था। कोई ऐसी बात नहीं मेरे दोस्त। अच्छा जी आज के पंजाबी सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं, बस आप सुनती रहे, आप कोशिश कर रहा हूँ सारे गाने आपको पसंद आए, एक भी आपको ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से आप बोर हो रहे हो। अच्छा भाई गयासुद्दीन बलबन कह रहे हैं कि असवा जी अब सही स्टूडियो में पहुंची हैं, आवाज की क्वालिटी भी ठीक ठाक। चले जनाब अच्छा हो गया फिर तो। ओए होए मिसेस फारूक आ गई हैं, सलाम अलैकुम कह रही हैं। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिसेस फारूक? ठीक है खैरियत से हैं। और जनाब मोहतरमा, क्या मोहतरमा हजम नहीं हुआ सच? अरे रिस्पेक्ट एहतराम हाथ बांध के मोहतरमा। संजीता जी देखें आप कितना ख्याल रखता हूं मैं। जनी नूर का मैसेज आ गया है, सलाम कैसे हैं सबको, सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो अस्मा जी की तो आवाज वैसे ही नो डाउट यार, एफएम 100 पे भी आई थी तो बहुत ही जबरदस्त लग रही थी, और माशाल्लाह जबरदस्त जो है वो आरजे हैं। देखिए जनाब आप लोगों के मैसेज पढ़ते पढ़ते 9:30 भी गया जी, कितना स्पीड है। जब भी मैं आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड घड़ी की तेज हो जाती है। चलें जनाब एक मिनट की ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
4: Active.
5: Yummy.
4: Adorable. Seven.
6: Say I've got a crush on you.
5: Kya pyaas to suno yaar.
6: Say I've got a crush on you.
7: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस 3636 पर, और जितने लोग मोहल्ले में सुन रहे हैं उन सब दोस्तों के लिए ये खूबसूरत सा ट्रैक।

हाय हाय हाय, क्या कहने मजर राई के। यार ये मजर राई जो है ना, कमाल आर्टिस्ट है, फुल टाइम माहौल बना देते हैं। दो गाने मैंने जरा मेलोडियस लगाए थे, सोचा मैंने कि थोड़ा सा जरा फास्ट ट्रैक दे, इसके बाद फिर जरा मेलोडियस ट्रैक की जाने बढ़ेंगे। बिलावल कहने सुम्बल जी और कादिर भाई को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और जनाबे वाला रिक्वेस्ट आना भी शुरू हो गई है। इसके अलावा मुश्क जो है वो कुछ कहना चाह रही है, और मुश्क कह रही है कि भाई मुश्क कहाँ जा रही है भाई, और अगर जा रही हो तो खैरियत से जाओ। कह रही है कि मैं जा रही हूँ, बहुत मिस करूंगी, फेवरेट आरजे हैं आप, सबको एक साथ लेकर चलते हैं, बस सबको साथ लेकर चलता हूँ, कुछ कुछ ढीले होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, फिर उनको जरा सख्ती से आओ साथ चलो, ये आदत अच्छी लगती है। अभी से जाने का सोच कर आप सबकी कमी रुला रही है। बेटा कहाँ जा रही हो, कहाँ चंदा कहाँ जा रही हो, मुझे भूलिएगा नहीं, बस कितने दिनों के लिए जा रही हूँ ये भी पूरी डिटेल बताओ। तुमने तो सस्पेंस पैदा कर दिया फुल टाइम हमारे सामने प्यारे से। नदीम अंसारी, नदीम भाई दी ग्रेट, और नदीम भाई की भी एक क्वालिटी है कि अपडेट रहते, इंसान को अपडेट रहना चाहिए, यही हम बात कर रहे थे ऑफ एयर। नई चीजें पुरानी चीजें भी अगर शामिल करें तो जरा नए तड़के के साथ। अफशा का मैसेज आ गया, सलाम सर अयाज, सर कहां से बना दिया तुमने। पंजाबी सॉन्ग इश्क दा जादू सुना दे भाई जन, मैंने तो सुना ही नहीं कभी जिंदगी में, किस चीज का जादू है, किसने गाया ये जादू, कौन कर रहा है। और वैसे आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, बड़ी जबरदस्त क्यू शीट बनी हुई है। एचबी सेलर और सलाम बेटा, मैं फरीदा बुरहानुद्दीन, कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी, अल्लाह का शुक्र। आंटी आप बताएं तबीयत कैसी है, मजे में है, खैरियत से हैं आप। अच्छा जनाब, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए ये मंथ बड़ा मजे का गुजर रहा है, वो इस तरह कि एक तरफ तो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप, और यार वैसे एक बात है यार, कुछ फिक्का ही कर दिया इन्होंने, कल का मैच खास तौर पे मैं बहुत मायूस हुआ, उससे पहले पुर्तगाल की टीम फारिग हो गई, रोनाल्डो चले गए, वर्ल्ड कप का मजा फीका, ब्राजील की टीम चली गई फिर फीका मजा, साले भाई भी चले गए, इजिप्ट के बड़े प्यारे जबरदस्त प्लेयर वो मेरे बड़े फेवरेट, और कल तो मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती उनको हराया गया। तुम क्यों जीत रहे हो, एक पेनल्टी थी वो भी नहीं दी, गोल किया था उसको भी उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने कहा नहीं भाई अर्जेंटीना को जिताना है, ऐसा मुझे लगा, बाकी अल्लाह जाने क्या है। अच्छा ये तो हो गया फुटबॉल की स्टोरी, इसके अलावा विंबलडन जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। आए हाय, बड़ा एक दौर होता था पीटीवी खाली जब आता था तो इंतजार रहता था, और वो देखते देखते आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता था, आपको बहुत सारे प्लेयर्स भी याद होते थे कि भाई ये मार्टिना हेंगिस हैं, ये बहुत सारे और थे, बहुत सारे नाम भूल रहा हूं यार, इतने सारे नाम थे, कौन जोरस जोरस क्या नाम था, क्या नाम, अजमाल, बहुत सारे थे उस टाइम पे मुझे याद होते थे, अब तो मैं भूल गया बिल्कुल। पीट सैंफ्रांस जबरदस्त, अब वालों के नाम मुझे जरा इसलिए याद नहीं कि मैं देख ही नहीं रहा, लेकिन बहरहाल आ रहा है, और स्पोर्ट्स लवर जो है वो जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते। इसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज T20 की हो रही है, जिसको मैं चुपके से एंजॉय कर रहा हूं। तीन मैच हो गए इंडिया के, एक बारिश की नजर, और दो मैच हार गए, और जो पिछला मैच आ रहे हैं वो तो तबीयत से बुरी तरीके से आ रहे, मैं बताना नहीं चाह रहा। 74 के 76 पे पूरी टीम बाहर इंडिया की, तो ये जब पाकिस्तानी टीम के लिए बुरा बोलोगे तो भाई अपना भी तो देखो। अच्छा जी, मिसेस फारूक कह रही है नाइस स्टार्ट, गुड स्टार्ट, वेलकम, थैंक यू वेरी मच मिसेस फारूक, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा भाई, कोई सभी मेरी अस्मी के लिए है इतना प्यार, आराम से संजीदा आराम से, मैं खुश आवाज अच्छी आवाज मजर आई की है, बड़ी मेहरबानी आपने तारीफ। अच्छा जरा बिल्कुल अस्मा जी के लिए अच्छा सा गाना मैं सोच रहा हूँ, कौन सा वाला उनको डेडिकेट करूं, ये वाला कर देते हैं, दोस्तों के लिए ये गाना बड़ा जबरदस्त होता है, फरिया परवेज की आवाज, ओ वेला याद कर, याद करें भाई और एंजॉय करें, मैसेज करें 3636 पर।

0: चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैस सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
8: Active. Yummy.

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो क्यूआर स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो तो जो

वेलकम बैक दोस्तों, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं। अच्छा भाई, नदीम भाई को मैं बता रहा था एक बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर का नाम टेनिस के, तो मुझे याद आ गया बोरिस बेकर थे भाई। बोरिस बेकर कमाल यार, जबरदस्त प्लेयर जर्मनी के वो, और भी इस तरह बहुत सारे थे। रॉजर फेडरर को याद करें, वो भी कमाल, जब तक वो खेलते थे मैं बड़े शौक से देखा करता था। इसके अलावा आंद्रे अगासी थे, वो भी बड़े जबरदस्त प्लेयर थे, उनकी ट्रेंड मुझे बड़ी पसंद थी, गंजे होके आते थे। अच्छा जी, राफेल निडाल पता नाम मैं सही ले रहा हूँ बिल्कुल, वो भी बड़े हिट थे, स्पेन के थे वो। और पीट सैम्प्रास, इनका तो नाम क्या, पूरी दुनिया में हिट था मेरे ख्याल से, सबसे ज्यादा इन्होंने चैंपियनशिप जीती है विंबलडन की, ऐसी मेरा शक है, हो सकता है मैं वो स्मार्ट हो रहा हूँ, तो खुद ही पता कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अजीज, और आपका शो सुनता हूँ फैमिली के साथ, अच्छा होता है, बड़ी मेहरबानी सर। और कराची बंस रोड में बारिश हो रही है, लो भैया कराची बंस रोड वाले दोस्तों इंजॉय करो यार बारिश में। आप तारिक रोड में भी हो रही है कि नहीं हो रही है यार, चेक करके बताएं मुझे भाई, कोई अगर तारिक रोड वाला सुन रहा तो मुझे मैसेज करके बताओ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा भाई, नाइस सॉन्ग दरी नूर, बड़ी मेहरबानी। बिलावल कह रहे हैं कि सर ब्राजील के इवेंट से कट होने पर मैं फीफा वर्ल्ड कप के मैच देखना छोड़ दिया, इंडिया के हारने की मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी। बस ये मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि तुम भी मेरी तरह खुश हो रहे हो। अच्छा, हमारे बड़े प्यारे से दोस्त आसिफ भाई हमें सुन रहे हैं। आसिफ भाई, इतने प्यार से आपने मुझे मुखातिब किया, बड़ी मेहरबानी, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बतें। 3 महीने के बाद वो कह रहे मैंने रेडियो सेट खोला और आपकी इतनी सुरीली आवाज, हाँ क्या कहने। अच्छा जनाब, ओ बेला याद कर संजीदा जी को भी पसंद आ गया है, और अस्मा जी मोस्ट वेलकम, और इनका बड़ा फेवरेट था। चले जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, ये भी कमाल ट्रैक है, जरा चेक करें आप।

0: Sharnaxis.
1: The best of 90s, 80s, and today's.

हाय जनाब, वेलकम बैक सुनरे एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी। नौरीन तौसीफ आ गई है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, कैसे हैं? सदा हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन। आप भी बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब गयासुद्दीन बलमन मुल्तान से हमें सुन रहे हैं, और भैया बहुत तारीफ कर दी क्यू शीट की भी, बड़ी मेहरबानी गयासुद्दीन बलमन। अच्छा जनाब, गाने पसंद आ रहे हैं भैया संजीदा जी को, क्यू शीट पसंद आ गई, बड़ी मेहरबानी, बहुत खास तौर पे ये ट्रैक, ये वाकई यार मेरा भी बड़ा फेवरेट ट्रैक है। अच्छा जी, मिसेस फारूक क्या कह रहे हैं, और आपने जो बात बताई है वाकई दुखी है। थोड़ी देर में मैं लोगों को बताऊंगा, लोग खुशगवार मूड में हैं, थोड़ा सा जरा बैड में, बहरहाल जिंदगी का हिस्सा, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, बिलावल कह रहे हैं अस्मा जी को वेलकम और सलाम। वालेकुम सलाम, खुश रहें, आबाद रहें। और मुश्किल लैला नहीं बता पा रही कि वो कहां जा रही है, क्या है वो, और वो कह रही अंदाजा भी नहीं कि वापसी कब होगी। एनर्जेटिक जो हो रहा है, एनर्जेटिक तो हो रहा है, लेकिन तुम बता दो ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी वो अजीम जगह है जहां तुम जा रही हो और हमें नहीं पता चल रहा वो। अच्छा जी, फरीदा बुरहानुद्दीन कह रही है मुझे तो पंजाबी और इंग्लिश कोई भी सॉन्ग समझ में नहीं आता, लेकिन बेटा मैं तो सिर्फ आपके को सुनती आया, बड़ी मेहरबानी। और चाची को मिस कर रहे हैं भाई, चाची को हम सब बहुत मिस कर रहे हैं, तो चाची जहां रहें खुश रहें और उनके लिए ढेरों दुआएं। चाची वैसे वाकई बहुत दिन हो गए आपकी आवाज सुने में, डिनर से फारिग हुआ तो सोचा अयाज के प्यारे अयाज भाई का शो सुन आ रहा होगा। चले जनाब, बहुत दुआएं, बहुत दुआएं, सॉन्ग्स लाजवाब नए लग रहे हैं, बिल्कुल जनाब नए, ब्रांड न्यू, कुछ पुराने भी हैं, पुराने भी रखे हुए मैंने। अच्छा जनाब, और साथ साथ मैसेज आपके पहुंच रहे हैं। चले जी, नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, और मेरा दिल चाह रहा है जरा पंजाबी बहुत सारे गाने थोड़ा सा चेंज, जरा सा चेंज, और शामिल करते हैं एक अरबिक ट्रैक, और वो है कैसे, आय हाय

भाई डांस करने को दिल कर रहा है। गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तुम्हें नाम से भैया, म्यूजिक के साथ ऐसा ना हो तो एक्सीलेटर पे भी पांव तेज दबराओ, अक्सर ऐसा होता है। फास्ट म्यूजिक है तो गाड़ी भी फास्ट। राज नाम सुन रहे हैं FM 100 अयाज अहमद के साथ। मैसेजेस कर रहे हैं KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636। टाइम हो गया है टाइम बताने का भी, और एक मिनट की ब्रेक भी मुझे नजर आ रही है।

0: Thursday to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: FM 100's time check. It's 10 p.m.
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
4: 100 FM।
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
6: FM 100।
2: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
6: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
7: एक्टिव यमी
8: जबरदस्त।
7: प्यास तो सुनो यार।

सुन रहे FM 100.7 मैसेज बिल्कुल पहुंच रहे हैं, लेकिन जरा ट्रैक से जाने भी बढ़ते हैं क्योंकि अपनी बातें इतनी ज्यादा हो जाती है गाने रह जाते हैं। रॉय जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने मैसेजेस 3636 पर। थैंक यू वेरी मच इतना पसंद करने का और क्यू शीट को पसंद करने का बहुत शुक्रिया।

0: Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जना वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 और बिलावल भाई कह रहे हैं कि आउट क्लास सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं. बिलावल भाई बहुत शुक्रिया अगर आपको गाने पसंद आ रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. चले जनाब एक घंटा गुजर गया और पता ही नहीं चला. अच्छा जी मुश्क जी बता रही कि मैं आपको बताऊंगी. सस्पेंस है यकीनन बहुत गहरा सस्पेंस है. हमें नहीं पता चल रहा कहां जा रही हूं लेकिन भाई जहां भी जाए खैरियत से जाए. भाई माहौल कराची का बता रहा है कि कुछ बारिशें होने वाली हैं. तो दोस्तों अगर बारिश हो रही है एंजॉय करें आप. और ये भी दुआ करनी चाहिए कराची में खास तौर पर जब बारिश होती है तो मैं दुआ करता रहता हूं यार सब खैरियत रहे. परेशानी भी वैसे हो जाती है. और फेसबुक के ऊपर आजकल हर कोई ना रिपोर्टर भी बन गया और हर चीज जो है ना वक्त पे जो है आपको नजर आ रही होगी. वो नाजमाबाद से आगे कोई जगह थी वो बता रहे थे या पता नहीं वही जगह थी. नाला पूरा भरा हुआ कह रहे हैं यहाँ सफाई नहीं कर रही है. और जब सफाई नहीं होगी तो पानी बाहर होगा और घर वाले भी बाहर होंगे. यार क्यों करते हो यार कराची के जो लोग ये जिनकी जिम्मेदारी है यार अपना काम क्यों नहीं करते भाई. कर दो कराची को साफ यार. पता भी है बारिशों का चांस है. ये जो मंथ है बारिश का होता है कि आवाम परेशान होगी. सबाब मिलेगा यार कर लो. पैसे तो मिल ही रहे हैं आपको थोड़ा काम भी कर लो. मैं क्या करूं हर बात मुझे बतानी पड़ती है. इसी बात पे ये ट्रैक

0: やめ
1: やるぞザバダ
2: जनाब वेलकम बैक टू एफएम 100 अब्दुल करीम अबड़ो भाई का मैसेज आ गया हबीब चौरंगी से सबको अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई क्या हाल है नदीम भाई अभी तो नहीं आए मुझे अयाज अहमद कहते हैं और सबकी पसंद पूरी करते हो हमें भी कुछ सिंधी सॉन्ग सुना दो देखो हालांकि आपने मेरा नाम गलत लिया है अब्दुल करीम भाई लेकिन फिर भी मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आज के शो में पूरी करने की कोशिश करता हूँ बल्कि एक गाना प्ले करने के बाद एक सिंधी ट्रैक अब्दुल करीम भाई आपके लिए मैं प्ले करता हूँ ठीक हो गया नाम क्या है मेरा अयाज अहमद हाय हाय क्या बात है संजीदा गाने समझ में भी आ रहे हैं पंजाबी के वाह वाह वाह वैसे बाकी पंजाबी इतनी कोई मुश्किल भी नहीं है गौर से सुने तो समझ में आ जाता है कि भाई क्या कह रहे हैं अच्छा भाई गाना डेडिकेट करने का कह दिया है अस्मा हुसैन ने संजीदा जी को और कह भी नहीं है काफी दिनों से दूर दूर रहनी मुलाकात भी नहीं हो रही तो इस पर ये गाना मैं जो है ना वो अस्मा जी की तरफ से संजीदा जी आपको डेडिकेट कर देता हूँ और वो है कैसे

0: Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end. Oh, so loud.
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: facebook.com/fm247365
5: active yummy adorable zabardast
6: kya pyaas to suno yaar।

हाय जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस बहुत ही प्यार से और रिक्वेस्ट भी आ रही हैं। मैं क्या करूं यार, आपका शो सुनकर हम सब एक्टिव हो जाते हैं। जरी नूर, इतनी पहले क्यों सुस्ती, एक्टिव रहा करो भाई, सारा दिन काम वाम किया करो। बंदा काम करता तो एक्टिव भी रहता है। बिलावल कह रहे हैं सर प्ले लिस्ट में सराय की सॉन्ग। बेटा एक काम कर, तू आके बना ले, बिलावल तू आके बना ले, सारे काम तू कर ले। इतनी दूर बैठ के हमें मैसेज कर जा रहे हैं, ये कर दो वो कर दो, करे जा रहे हैं यार। जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी लिमिट्स हैं, सारी हम पूरी कर रहे हैं। क्या करूं मैं कितने जावा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, मिजाज कैसे हैं? अभी घर आए, आते ही शो ऑन किया, लेट, बहुत मिस यू जानी, अपनी याद की हाजिर जानी। अच्छा ठीक, महा यूसुफ जी आ गई, वैसे इनका मैसेज मैं गौर से पढ़ता हूँ तब कहीं जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है। महा यूसुफ खुश रहे आप। अच्छा जनाब, तला हमें कह रहे हैं अयाज भाई प्लीज प्लीज दो दफा प्लीज है, वो अरबिक ट्रैक एक दफा फिर प्ले कर दे। बस करो तला भाई, बस करो तला, बस कर। और इतने सारे गाने हैं, और भी प्ले करने होते हैं, एक ही गाना लगाते रहेंगे तो क्या। अब्दुल करीम भाई ने कहा सिंधी गाना देखो, पंजाबी हम लगा रहे, सिंधी कह रहे हैं भूल गए, ये तो उन्होंने एग्जैक्ट नहीं कहा लेकिन उनके अल्फाज ऐसे थे। नाम क्या है अब्दुल करीम भाई? मेरा नाम क्या है? अयाज, अयाज अहमद नाम है। ठीक है, तो अब्दुल भाई आपके लिए, जितने मेरे सिंधी दोस्त सुन रहे हैं उन तमाम दोस्तों के लिए खूबसूरत ट्रैक।

0: हाय जनाब, वेलकम बैक टू FM 100। और हमारी रानी हुसैन, प्यारी सी बहन, वो भी हमें सुन रही है और खूबसूरत मैसेज किया है और वॉइस मैसेज किया। चाह रहा हूं मैं उनकी आवाज पहुंच जाए। क्या कहते हैं यार, वॉइस मैसेज तो सुना सकता हूँ। चले जनाब, सुना देता हूँ मैं वो क्या कह रही है। और क्यों नहीं प्ले हो रहा भाई, ये लीजिए जनाब, प्ले करने की कोशिश करता हूँ।
1: अयाज भाई, आपका माशाल्लाह जो सलीका है ना, लिसनर्स को हैंडल करने का, बड़े सलीके से आप हैंडल करते हैं। और बीच बीच में जो चुटकले होते हैं, मेरे मियाँ सिर्फ मुस्कुराते हैं, लेकिन आपकी बातों पे वो कहकहा भी लगा देते हैं। तो मेरे लिए तो आप मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। और जैसे आप वफा करते हैं, खुदा आपको हमेशा वफाई अता फरमाए।
0: आमीन सुम्मा आमीन। बहुत तवील गुफ्तगू है, लेकिन बहुत ही शुक्रिया आपका। इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से आप मुझे मैसेज कर देते हैं, थैंक यू वेरी मच। और मियां साहब, किया हाल है तो आडा, ठीक हो? बस इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी तो दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहती। अच्छा भाई, सिंधी गाना पसंद आया कि नहीं आया? फरीन शहजादी आगो, शहजादी किथे हो तुसी, आज से सारे पंजाबी गाने। बैकग्राउंड सुने आप, बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद आ गया भाई कुछ।

भाई जनाब, और अयूब आफरीदी भाई आ गया है और कहने कोई भी सॉन्ग महा और गुलमानों के नाम कर दें आप। डन हो गया सर, नेक्स्ट गाना अयूब भाई की तरफ से ना, महा और गुलमानों के नाम। अच्छा भाई, आउट ऑफ कंट्री गेस्ट आए हुए हैं, आउट ऑफ कंट्री गेस्ट आए हुए हैं, डिनर पर गए थे, मजे हैं भैया मजे। और क्या क्या SMS रीड करने में कंजूसी करते हो? कंजूसी नहीं करता, मुझे समझ में मुश्किल आ रहा था क्या लिखा हुआ है, वरना तो मैं देखें आप, इतनी मेहनत मैंने किसी पे नहीं की, इतनी मेहनत मैं अपनी स्टडीज पे करता, आज कहां होता मैं। अयूब आफरीदी, नाइस अयाज, सलाम, जीते रहो माशाल्लाह, सबा गुल और सब सुनने वालों को सलाम। अच्छा ये पहले मैसेज था, वो दूसरा मैसेज था सर, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा भाई बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, सलीम बिरयानी वाले भाई का मैसेज, सर सर कैसे हैं आप? बिरयानी वाले भाई आपका जिक्र आता है मुंह में पानी आ जाता है। वालेकुम सलाम। अयाज अहमद भाई कैसे हैं आप? और खारादर से मैसेज है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अता मोहम्मद का भी मैसेज आ गया, अस्सलामुअलैकुम, आपका शो सुन रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी है अता साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी अता, गहराइयों से। अच्छा भाई अभी वो कह रहे थे कि भाई सरायकी गाना, सरायकी गाना भी क्यू शीट में मौजूद है, अताउल्लाह साहब सरायकी गाने गाते हैं, उनके साहबजादे ने भी उनका साथ दिया है। तो ये गाना जनाब अयूब आफरीदी की तरफ से गुलमानों को और महा यूसुफ जई को भी डेडिकेट कर देते हैं, और वो है कैसे,

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
4: वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100। और रुबाब क्या हाल है? सलाम अयाज, सब सुनने वालों को सलाम। अयाज का शो की क्या बात है रुबाब जी, आपकी भी क्या बात है। अच्छा जी, और अयूब आफरीदी कह रहे हैं अयाज भाई थैंक यू, गुड सॉन्ग, खुश रहो। असगर भाई ने भी कॉल की, असगर भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से। अताउल्लाह लगते हैं, बहुत फेवरेट है आपके। अच्छा रीमा आ गई, अस्सलाम वालेकुम। अयाज भाई कैसे हैं आप? बहुत सारी दुआएं आपके लिए, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका भाई। बाकी लोग जो है पसंद कर रहे हैं। अच्छा भाई, और दुखी दिलों की आवाज सरकार कहां, मिसेस फारूक कहां दुखी दिलों की आवाज? और इसके अलावा रानी का मैसेज सुन के उनको बहुत अच्छा लगा, सलाम भाई मिसेस फारूक की तरफ से, रानी साहिबा आपके लिए। और अस्मा को मेरी तरफ से, अस्मा हुसैन अगर आप सुन रही हैं तो मिसेस फारूक का सलाम कबूल करें। प्लेलिस्ट पसंद करने का भी शुक्रिया आपका। हाय हाय क्या बात है, संजीदा जी तो हर गाना पसंद कर रही हैं। अच्छा भाई, अब जरा एक और ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, और ये भी कमाल, जरा चेक करें आप। कोशिश कर रहा हूं मैं आज सारे जरा अपडेट गाने हों।

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100। माहीन हमें मैसेज कर रही हैं, माहीन जी खुश रहे हैं, आप इतनी सारी दुआएं दे दी हैं आपने, कह रही है आज आप आ जाते हैं तो दिन बन जाता है, बाकी दिन तो बना हुआ वैसे ही। चलिए बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, और जरी नूर कह रही है कि आरजे अस्मा को सलाम, बहुत दुआएं। चले जनाब उनकी जानिब से वालेकुम सलाम। आरजे अस्मा आप चाहिए हुई है यहाँ पे भी मेरे शो में भी, आपका टिका के जिक्र है। और वैसे आरजे की ये खास बात होती है, अच्छे आरजे की, क्योंकि जो लिस्टनर्स हैं उसे हर जगह कहीं ना कहीं विश करते रहते हैं। तो क्या ही बात है अस्मा जी आपकी। अच्छा जी, बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद कर रही है भाई संजीदा जी, क्या कहने आपके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, एक जरा पुराना गाना मुझे याद आ गया, नए गाने जहां मैं आपको सुना रहा हूं वहां एक पुराना गाना याद आ गया। और ये इनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, वजह मुझे नहीं पता। नेशनल गाने हो, पंजाबी गाने हो, कमाल इनकी आवाज है। और नाम है इनका अमजद हुसैन, और बड़ा पुराना गाना, लेकिन इनकी आवाज में बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा चेक करें आप।

है, क्या बात है जनाब, नए गानों के साथ जरा पुराना गाना भी खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जनाब, और रुबाब जी आपका मैसेज आया है लेकिन समझने में थोड़ा समय कासिर हूँ, लेकिन मेरा बहुत शुक्रिया। बिलावल कह रहे हैं अल्लाह रीमा जी को खुशियां दे, आमीन। हुरिया एंड और सुबहान को नसीब अच्छी कर, आमीन आमीन जनाब, आमीन। और अयुब भाई बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआएं देने का, इतना सारा प्यार देने का, पर बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी।

वाह वाह वाह वाह, पुराने वक्तों के गाने, राजा तख्त हजारा ये वगैरह जिक्र होता था। अब देखो यार पार्टी वार्टी इसका अजीब अजीब गाना भी चेंज हो गया, फुल माहौल चेंज हो गया। चेक करें ब्रांड न्यू गाना, देखें वो किस तरह बन रहे हैं।

0: Monday to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud!
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। With Yellow by Jazz.

रंजना वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस के सिलसिले भी जारी हैं। और रिहान भाई बहुत शुक्रिया इतने सारे मैसेज करने का और दुआएं देने का, और क्यू शीट पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कमाल गाने आपने प्ले किए। अच्छा जी, इसके अलावा बिलाल कह रहे हैं सर गुड नाइट गुड प्ले लिस्ट, थैंक यू वेरी मच भैया बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और करीम बलोच कह रहे हैं आज भाई अभी तक आपने बलोची गाना नहीं सुनाया, बलोची गाने का भी वादा किया था मैंने। एक मिनट जरा, कहां गया बलोची गाना, क्यू लिस्ट में मैंने शामिल किया था, ऐसी बात मिल गया जनाब, ये चेक करें जरा आप, चेक करें आप, बाकी बातें बाद में होंगी।

हाँ जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे FM 100। और क्या बात है यार, टाइम खत्म होने की तरफ जा रहा भैया, 10:49 हो गया। अच्छा जनाब, महाज यूसुफ जाई की कुछ नाराज वाला मैसेज आ गया है, पता नहीं क्या आ गया। महाज यूसुफ जाई किस बात पे नाराज हो, मुझे समझाओ भी ताकि हमें पता हो कि हाँ भाई ये बात। अच्छा, चार दिन से तबीयत बहुत खराब थी मेरी आज भाई, कल ड्रिप लगवाई है। अल्लाह आपको सेहत दे रीमा जी, अल्लाह आपको सेहत दे, थोड़ी हिम्मत हो गई है मेरी। बस बस आपने ड्रिप में लगवाती रहना है और कुछ खाने पीने पे भी तवज्जो देनी है। लेकिन क्यों भाई, ड्रिप क्यों लग रही है? अयूब अफरीदी कह रहे हैं, आज भाई महानूर को अल्लाह पाक कामले सेहत अता फरमाए, आमीन आमीन। रीमा जी को भी साथ में। अच्छा जी, टाइम थोड़ा रह गया है। अच्छा जी, पंजाबी गाने में सुना तो रहा हूँ, और पंजाबी गानों में शुगल वाले गाने भी बड़े होते हैं। एक गाना मच्छर मुझे नजर आ रहा है, वो मैं सुनाता हूँ। जिन जिन जगहों पे मच्छर हैं, जिन मोहल्लों में कॉलोनियों में मच्छर हैं, उनको डेडिकेट कर देता हूँ।

क्या बात है जनाब। तो ये बीमारी की असल जो जड़ है ना रीमा जी, ये मच्छर है। मच्छर का जो है ना वो आपने केयर करनी है अपनी, और जो जो लोग बीमार होते हैं बुखार होते हैं तो जरा केयर किया। अच्छा जनाब, टाइम तेजी से गुजर रहा है, एक और ट्रैक की जाने बढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी सुनाता हूँ आपको मैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने रह गए प्ले होने से।

है जनाब। इसी के साथ ही अयाज अहमद को दें इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब राखा, खुदा पामान।

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: FM 24/7/365

बैक माय डियर डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, देखने वालों, शोहर बीवी का तो तकरार होते रहते हैं। शोहर कहता है, मैं बिस्तर मर्ग पर है, और कहता है मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया है। बीवी कहती नहीं नहीं बेबी, ऐसी बातें नहीं करती। शौहर कहता है मुझे तुम्हें सच बताना है, तुम्हारे पास जो 50,000 रुपए थे ना, वो मैंने चोरी किए थे। बीवी कहती है कोई बात नहीं बेबी, कोई बात नहीं। शौहर तुम्हारे जो गोल्ड का हार चोरी हुआ था ना, वो भी मैंने किया था और पड़ोसन को दिया था, क्योंकि उसके साथ मेरा चक्कर था। बीवी कहती है अरे छोड़ो बेबी सारी बातें, क्या बातें कर रहे हो। एक और चीज है, शौहर जी कहते हैं कि तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड के साथ भी मेरा अफेयर था। बीवी कहती कोई बात नहीं बेबी, आप बेफिक्र होके जाओ, आप जो है ना बेफिक्र होके जाओ, तुम्हें जहर भी मैंने ही दिया था। इसको कहते हैं बीवी। अच्छा जरा, क्योंकि अभी तक ये मुहर्रम का महीना तो चल रहा है, मगर ये कि मौला की याद तो कभी भी आती है और अच्छी लगती है, और अली जफर ने भी मौला के लिए शान में बहुत अच्छा गाया है।

एक ही अच्छा सॉन्ग है, सिंपल सा है, मगर ये 3 साल ये ओएसटी है, बिलाल सईद ने बनाया है, गाया है, कंपोज किया है, लिखा है, सब कुछ इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स की प्रोग्रेशन है वो तो बहुत अच्छी है।

0: About your ears. Just here. FM 100.
1: किसी का कही है बेसिकली खान साहब होते हैं जो कहते हैं कि और मेरी आदत है कि एक तो मैं जिद नहीं छोड़ता और एक जिसका पीछा करता हूँ उसको दिन में तारे दिखाता हूँ शुरू से आदत है मेरी। देखो ना तुम अपना मुस्तकबिल तो बदल नहीं सकते लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हो और तुम्हारी आदतें तुम्हारा मुस्तकबिल बदल देंगी। हर किसी को बहुत जल्द अपना न समझ जा करो, हर किसी को बहुत जल्द आंखें बंद करके एतमाद न कर लिया करो। यकीन मानो दुनिया बड़ी अजीब है, लोग दिल और एतमाद बहुत जल्द तोड़ देते हैं। दलीरी का ताल्लुक नस्ल से होता है, सिर्फ तलवे चाटने से जिगर मजबूत नहीं होता और हाल पूछने से तो दिल भी ठीक नहीं हो जाता जनाब। अगर हो सके तो कभी कभार लोगों का दिल रख लिया करो, उनकी नापसंदीदा बातें बर्दाश्त कर लिया करें, उनके गुस्से को एक मिजाज को इग्नोर कर लिया करें कभी कभी। ये खुदा लोग हमेशा नहीं रहते, बखुदा ये लोग हमेशा नहीं रहते, अचानक मर जाते हैं। अपना ख्याल रखें, कहते हैं कि ताल्लुकात निभाने के लिए सिर्फ वादों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो एहसास की।

ये बात बहुत आम हो चुकी है कि अपने पेरेंट्स को ओल्ड होम्स में ले जाके छोड़ते हैं, ये कह के कि हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, इनकी मेंटल हालत ठीक नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। आप जब छोटे बच्चे थे, जब आप पैदा हुए थे, आपकी कोई मेंटल हालत थी तो ये आपको पालते थे, आपको सुलाते थे, आपको दूध पिलाते थे, आपसे हर चीज हर जरूरत पूरी करते थे। यही हाल समझकर, यही समझकर अपने पेरेंट्स की कदर करें और उनका ख्याल करें। ये गलत बात है कि ओल्ड होम्स जाके छोड़ देंगे उनको। मुझे मैं पूर्व उम्मीद हूं कि मेरी बातें आप समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। बात करने के लिए, समझने के लिए, समझने के लिए भी अकल और फहम जरूरी होता है। लीजिए, अब 12 बजने वाले हैं, यानी कि दिन चेंज होने वाला है। और आपकी एक बात पता है, आज मेरी अपनी बर्थडे है।

0: FM 100's time check. It's 12 midnight.
1: We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest station.
2: This is FM 100.
3: If you want to listen to the best music, then FM 100 is the right choice.
4: We have a bird song to mujhe mil nahi raha is waqt. Aap samajh jayein. A very happy birthday to me. Happy birthday. ठीक है जनाब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस विच आई एम वेटिंग फॉर. देखें, ये इन्होंने मुझे भी ट्रिब्यूट दिया मगर चुपके से सरगोशी में.

0: 24 hours a day.
1: The better sound processor, FM 100.
2: मेरे सॉन्ग का रेडू है मेरा मेरे और अलन फकीर की सॉन्ग का. इसकी प्रोड्यूसर थी सायरा काजमी. और उस वक्त इस म्यूजिक को यकजा किया था, कंपोज किया था ओरिजिनली वो जावेद लादिता थे, मगर ये ट्यून ओरिजिनली अलन फकीर साहब लाए थे जो बड़े अरसे से इसको गा रहे थे. मगर चूंकि सिंधी प्रोग्राम था ज्यादा व्यूशिप नहीं थी, और जैसे ही ये इसको पिकअप किया रंग तरंग में सायरा काजमी ने हम दोनों को मिला के गवाया, तो ये गाना आज तक सुपर डुपर हिट है. और मैंने एक अचानक देखा था मैं इस पे 9 मिलियन क्लिक थे, 9 मिलियन, और मुझे पता ही नहीं. और जब हमने यूट्यूब को बोला तो यूट्यूब ने कहा कि किसी डॉक्टर साहब ने इसको पोस्ट किया था, लिहाजा आपको कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा. और मैंने कहा छोड़ यार, जो पैसे किस्मत में होंगे वो मिलेंगे. मगर ये गाना बहुत अच्छा है, पॉपुलर है, और ये क्यों ना हो, ये हम हैं. और मैं अगर आपको ये बोलूं कि जो भी आर्टिस्ट हम गाता है ना, उसको अल्लाह फिर लिफ्ट जरूर कराता है. चले एक और सॉन्ग सुनते. आसिम अजहर बहुत तेजी से हिट होने वाला आर्टिस्ट है, और क्यों ना हो, इतना सुरीला, इतनी महारत रखने वाला आर्टिस्ट. और मेरे लिए फख्र की बात यह है कि मेरे दोस्त के बेटे हैं ये अजहर हुसैन, जो बहुत बड़ा कीबोर्डिस्ट है पाकिस्तान का, उनके साहबजादे हैं.

कहता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सुरीला आर्टिस्ट होता है ना, सुरीला आर्टिस्ट और सुरीला म्यूजिशियन, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो फिर कोई आइटम करेगा, फिर कोई गाना करेगा, फिर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो सुर में है। सुर इज एक्सेप्टेबल टू ह्यूमन ईयर्स। इंसान के कानों को सुर बहुत अच्छा लगता है, हालांकि इसको पता नहीं है ये कौन सा सुर है, सारे गामा पा नहीं था वगैरह, कुछ भी नहीं पता, मगर बस इंसान को मजा आता है। और कुछ दो जो टेक्निकल लोग होते हैं वो तो हम बताते हैं इसमें अच्छाई क्या है, इसमें खामी क्या है, ये भी एक एक बहुत बड़ी साइंस है, ये आसान चीज नहीं है बिल्कुल।

69 years, or maybe a little bit. Maybe I'm 68 or 69. Man, I'm an old timer.

आरिफ लोहार की तो बात ही, क्या बात करें इनकी, कोई जवाब नहीं है, कोई मिसाल नहीं है इनकी तरह। हमने बाप की जुगनी गाई तो पूरे पाकिस्तान गा रहा था उसे, और सब गाने के लिए लड़ रहे थे स्टेज पर। उसके बाद इन्होंने जो अपनी जुगनी बनाई, ये जो गा रहे थे ये भी हिट हो गया। ये फोक सॉन्ग जो होते हैं ये सीना बसीना चले आ रहे होते हैं, किसी को नहीं कह सकते वेरीफाइबल कोई भी सोर्स नहीं है जिससे पता लगे फलाने की कॉम्पोजिशन है। योर लोकेशन फॉर मैक्सिमम म्यूजिक। तो मैं अब साथ साथ आपसे ये अर्ज किया जा रहा था कि म्यूजिक की एक बहुत लंबा सफर है, और ये कहते हैं कि हिस्ट्री का मुझे बड़ा शौक है, मैंने काफी पढ़ा है हिस्ट्री, बल्कि सोशियोलॉजी तो मेरी पढ़ी हुई है, आई एम असिस्टेंट PhD इन सोशियोलॉजी, ह्यूमन सोशियोलॉजी, एंड वी रोट फॉर हजारा, एक नेम है कोयटा में जो दरी में बात करते हैं, दरी एक पर्शियन का डायलेक्ट आप कह सकते हैं, मगर आप एक चीज का मुझे बड़ा वो ताजुब होता है कि हमारी जो हिस्ट्री है ना, ह्यूमन हिस्ट्री, नॉट ओनली मुस्लिम्स, द होल ह्यूमन हिस्ट्री इज ब्रूटैलिटी, बारबेरिज्म, लड़ाई झगड़े से भरपूर। जब आबिल ने काबिल को कत्ल किया है ना, बस इंसान जमीन में आते ही छीना झपटी मार पीट, एक दूसरे को छीनना, जिसमें ख्वातीन बहुत ज्यादा इसका शिकार होती थी, क्योंकि ख्वातीन को वो एक गजा समझते थे, वैसी लोग एक टूल, टॉय, और इसी तरह करते करते ऑटोमन एम्पायर, एक एम्पायर थे जैसे रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ठीक है, मंगोलियन एम्पायर, तो ऑटोमन एम्पायर टर्किश का था, टर्किश तो मुसलमान थे सारे, मगर किस तरह के मुसलमान थे जिनको दूसरे मुसलमान यानी ईरान की तरफ के लोग उनको मुसलमान कहते ही नहीं थे। एक अहमद सुल्तान थे, वो जब बड़े भाई थे, वो बादशाह बनने के लिए आए थे, उनके लिए जरूरी था कि उनके 19 जो भाई थे, 19 मतलब उनके जाहिर है उनके जो बाप थे वो यही करते थे, उसके अलावा जंगों में भी वो जाके खेमा बैठे रहते थे, हुकुम चलाते थे, जंग तो बेचारे सोल्जर ही मरते थे उसमें भी। खैर 19 भाइयों को उन्होंने फांसी मतलब हाथों से जो रस्सा बांध के गला घूंट के 19 भाइयों को कत्ल किया, जिसमें उनके फादर ने भी साथ दिया, उनके मदर ने भी साथ दिया, और कोई वो जुर्म नहीं था, उनकी जो कौम थी उसको वो भी एक्सेप्टेबल था। अब वो बादशाह थे, बड़े शौक से बने, और बाद में उनको भी वो भी शहीद हो गए, उसको भी। तो इसी तरह यूरोपियन जो वेस्ट है उसमें भी बारबेरिज्म बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। तो खैर ये तो हिस्ट्री है, अब अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी वही हो रहा है जो पहले होता आ रहा था। अब बात यह है कि हम क्या करें, ये होता चाहे रहेगा, अब कब खत्म होगा, लेकिन खाम खा के जंग शुरू हुई और इतने लोग मारे गए हैं, कोई
मतलब वो एक ट्रंप है और एक नेतन्याहू है, एक ईरान के सदर हैं, एक ओमान के हैं, एक गल्फ के अरब हैं, सब ये तो सब किंग्स हैं ना, मगर मरते कौन है आप देखें, मरती आवाम है, लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, बच्चे और औरतें, जवान बूढ़े सब वही मरते हैं। अरे बहस को छोड़े, आगे चलते हैं, गाने सुनते हैं गाने।

Let's listen to this new song. Mu'aziz Sharif.

आप बैठे हैं धनी ऑफिशियल OST, जिन लोगों ने यह प्ले देखा होगा उनको तो ज्यादा मजा आएगा। आप गौर से सुनेंगे इनके अशआर, आपको भी मजा आएगा।

0: This is your music.
1: अपने गाने ढूंढ रहा था ताकि आपको अपने गाने भी सुनाऊं, मगर टाइम अब जाने का हुआ चाहता है, इसलिए माजरत खा हूं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह अपने गाने सब पैकेज बना के लाके आपकी खिदमत में पेश करूंगा इंशाल्लाह। अरे कहते हैं कि जिंदगी में उड़ नहीं सकते तो भाग भाग भाग भाग भागते रहो भागते रहो, भाग नहीं सकते तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चल नहीं सकते तो रिंगते रहो रिंगते रहो रिंगते रहो रिंगते रहो। मगर एक ने पकड़ के पूछा, भाई सब तो ठीक है मगर जाना कहाँ है? This was a great movie, Titanic. यूनिवर्स ने जब ये शिप बनाया था तो ये बना दी करा दी थी कि ये दिस शिप इज अनसिंकेबल, मतलब ये जो जहाज बनाया है पानी का किसी तरह भी डूब नहीं सकता। मगर देखें नेचर के सामने सब बेबस हैं और वो जहाज कैसे डूबा, और ये कमबख्तों ने गाना भी ऐसे बनाया है कि वाकई इंसान बिल्कुल सारा मंजर सामने आ जाता है कि किस तरह पानी में लोग डूब रहे होते हैं।

0: Buhari bin Muazzam Ali Khan and rendition of Abbas Ali Khan, P.A.R.
1: Buhari bin चली जा रही
0: और इसके साथ ही मेरे जाने का टाइम हो चुका है. इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ. आई विश यू ऑल द बेस्ट.
1: तुम
0: आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज एंड शब खैर.

0: FM 100's time check. It's 1 a.m.
1: This is your music.

loneliness. That's the killer.

Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan. मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने हबीबी स्लीपलेस नाइट में कहूंगा आपको खुशामदीद. आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक और 3 बजे तक करेंगे खूब अल्लाह तगुल्ला. इस हले गुले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 बार. जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, ट्रैफिक सिग्नल की पास जारी करें, बड़ी मेहरबानी होगी. कोई ना कोई मैं सवाल फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब, या कोई ना कोई टॉपिक हो जाता है या कोई ना कोई चर्चा हो जाती है, यानी कि समझ रहे ना. लेकिन उससे पहले मैं करता हूं आप लोगों को वार्म अप, और आज वार्म अप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करूंगा भाई. बहुत अरसे के बाद मैंने बहुत पुराने गाने सुने इंग्लिश, हाय मजा आ गया यार मुझे. इससे पहले कि मैं वो ट्रैक चलाऊं और आप लोगों को वार्म अप करूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यादें कुछ ऐसी होती हैं इंसान की, खूबसूरत यादें जिनको याद करके इंसान जो है उसका दिल खुश हो जाता है, खराब मूड बेहतर हो जाता है, हैं जी ते हैं जी. तो यार याद किया करें अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छी अच्छी बातों को, और बुरी बातों को कर दिया करें साइड पे. तो फिर एक गाना जनाब जरा आप सुने, क्या बात है. सिंगर का नाम आपने बताना है. क्या बात है, सिंगर का नाम आप लोगों ने मुझे बताना कि कौन सिंगर है.

0: वेलकम बैक, डोंट स्टॉप गाने का टाइटल भी बता दिया, गाने के सिंगर का नाम आपने बताना है। खैर आज बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करने का मूड है, अच्छी अच्छी सी बातें करने का मूड है, ताकि आप लोगों का भी मूड ओके ट्रेक हो जाए। तो सबसे पहले जो मैंने कहा है आपने वो करना है, यानी के अच्छी अच्छी बातें याद करनी है। तो पूछ भी यही रहा हूं, बेहतरीन खूबसूरत लम्हा या वो बात जिसे आप खुश हो जाते हो, यानी के समझ रहे हैं ना आप। बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जान है, और सबसे पहले फीता किसने काटा है जनाब, हमारे यूजर भाई ने बाबोज से, कह रहे हैं 500 की तमाम फैमिली को और तमाम सुनने वालों को सलाम, खुसूसी तौर पर आंटी चाची अरूसा गुलबानो, तमाम डॉक्टर्स, इमरान भाई, खिताब गुल्लाला, गुफरान भाई और आपके वालिद साहब को सलाम। वालेकुम असलाम, कल गाना डेडिकेट किया था आपकी जानिब से आपकी जौजा को, उसके बारे में कुछ बताइए, सुना था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप, लाला को मेरा सलाम, आज ये सॉन्ग चला दें। क्यों चलाएं भाई,
1: प्यार नाल नास ही।
0: सबा गुल कह रही हैं, कैसी हो बहना, ठीक ठाक हो, और मैं महानूर की बहन कायनात, भाई उसके अपने माँ बाप नहीं है, आप सबको वो अपनी फैमिली समझती है, हम भी समझते हैं। कल शाम उसका ऑपरेशन हुआ है लेकिन अभी तक होश नहीं आ रहा, सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। भाई मानूर की बहन कायनात, हम सब ने कल भी बहुत सारी दुआ की थी और आज भी बहुत सारी दुआ कर रहे हैं। अनीस कह रहे हैं सलाम नदीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई सबसे गुजारिश है कि मानूर के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उसको होश आ जाए और तंदुरुस्त तमाना हो। लाला आ गए हमारे, कह रहे जन जगर ये हबीबे, डेरा सलामूना, डेरा गुलूना, आपके लिए दास खाना, डेरा मेहरबानी, डेरा मनाना। और गुल मेहर कह रहे हैं कि आप गो FB पर देखा, वाह जी वाह, वाकई में यू सेम लाइक बिग बी, बिग बी आपके बड़े भाई, फैंटास्टिक शो। गुल मेहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जरा नवाजी आपकी, मोहब्बत आपकी, चाहत आपकी है जी, ते हैं जी, सब अच्छी अच्छी बातें करनी है, यानी कि समझ रहे हैं ना। इरफान मेमन आज हैरत अंगेज तौर पर जल्दी आ गए हैं, कह रहे सुई छोड़ियों को माजूम से करीब से बच्चे का सलाम कबूल हो, एक सॉन्ग ऑल मेमन कजन्स और स्वीट फैमिली के लिए डेडिकेट कर दीजिएगा। अयूब लाला, मुश्क, उम्मे रुबाब, सिस आंटी, समी भाई को अस्सलाम वालेकुम। जब अम्मी कार की बात करती हैं बहुत खुश होती हैं। कार से मुराद क्या है, देखिए कार पश्तो में कहते हैं काम को, कार खवा यार है। क्यों फजूल बैठा हुआ है तुम, लेकिन अम्मी कौन से कार की बात करती है, वो आपके लिए कार की बात तो नहीं करती। इरफान मेमन कार खवा यार है। अच्छा जी गाड़ी की बात करती है तो खुश क्यों होती है, मतलब क्यों, मतलब ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है।

हेलो, हाँ जी, अब आवाज आ रही है। उधर से भी आ रही थी, यानी कि समझ रहे ना आप, कुछ इस तरह का सिलसिला हो रहा है, इसको ख्याल रखिए। आप हमारे सत्तार भाई साहब आ गए, उनके लिए तालियां। द ग्रेट इंजीनियर ऑफ FM 100 सत्तारिया भाई, सत्तारिया ए सत्तारिया। सत्तार भाई, अभी आपके आने से डर गया, ये सही हो गया? खैर, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। बाकी सब ओके, ठीक है। खैर, जब होगा कुछ तो मैं आपको फिर दोबारा बोलूंगा सत्तार भाई दरारा। एनीवे, अभी हम बढ़ते हैं जनाब उसी मैसेज की जानिब जो कि इरफान मेमन भाई का था। महानूर के लिए बहुत सारी उन्होंने दुआएं की हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और सत्तार भाई को अस्सलाम वालेकुम, मेमन भाई की जानिब से इरफान मेमन। इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपके इतने सारे मैसेज आए यार। यासिर खान है दिल पर जाने दासियो खान है आज कहां से आ गया यार, आई है यार। सलाम नदीम भाई, संग यार खई जी, आई लव यू यार, आई लव यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10। हम भी आज सुन रहा हूँ शो, आओ खाना यार, दासियो खाना तुम्हारा बीवी ने जैसे, या तो भाभी गई होंगी भाई कहीं, पक्का पक्का मैं बता रहा हूँ आपको, मेके शेके गई होंगी वो। यासिन खान है, बिल्कुल दुरुस्त बताना है तुमने, झूठ नहीं बोलना है, या भाभी इधर उधर कहीं गई हुई है दावत शावत पर। आओ गाना पख्तो लगाओ यार, पख्तो तो लगा रहे यासिन खान, कैसे बात करते तुम। नौरीन दौजीब हमारी प्यारी सी बहन आ गई है, कहां से पता आपको, फैसलाबाद से। कह रही है सलाम अलैकुम नदीम, तबीयत मिजाज कैसे हैं, ढेरों दुआएं और कायनात की सेहतयाबी के लिए बहुत सारी दुआएं। कायनात बहन है, उसकी बहन महानूर है जिसके लिए आप दुआ कीजिए। कायनात ने मैसेज किया महानूर की बहन, यानी कि समझ रही है ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैसेजेस आपके और भी बहुत सारे हैं, मगर फौरन से बेशतर लेकर जाऊंगा आपको एक और गाने की जानिब। और माइकल का मैंने जो सुनाया था ना, अरे माइकल का नाम भी ले दिया मैंने, माइकल जैक्सन का गाना था वो, कौन सा वाला, ए वाला, डोंट स्टॉप, आय हाय हाय। तो इसके फौरन बाद अगर शफकत भाई हो जाए तो क्या बात है भाई। जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, हाय हाय, मुझे मार देना, मुझसे मुंह ना मोड़ना, मैं रो रो के यही दुहाई दे रहा हूँ। मतलब आंखों से दूर ना होना।

0: Welcome back! अखियां तो ओले ओले, हाय हाय आंखों से इधर उधर मत होना। हाय क्या गाना भाई, फ्यूजन बैंड का था, Once Upon a Time, जब शफकत अमानत अली फ्यूजन बैंड में होते थे तब ये होता था। अब बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। कहां गया लाला का मैसेज था, गुड्डेरा गुलूना रोड़ा जनाना। गुल मेहर करी है आपको, अच्छा गुल मेहर का हो गया, मेहर है या है, मतलब ये मेल है फीमेल है, ये तो बताओ गुल मेहर। और लाला कहते हैं कि जिगर या हबीबी खुश रहो, महनूर मुश्क सबा गुल संजू को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई बिग बी बोले तो अमिताभ बच्चन और गुल मेहर, ओहो कहा अमिताभ भाई, विजय दीनानाथ चौहान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सबा गुल कह रही है। नदीम भाई अल्लाह सेहत दे, मानूर को भी आमीन, अल्लाह आपको भी सेहत दे सबा गुल। और गुल बहनों को महा को सबा गुल के नाम एक गाना अगर हो जाए तो क्या बात है, अयुब लाला बिल्कुल हो जाए। अनीस भाई कह रहे हैं भाई आप जैसे आरजे की वजह से रेडियो चल रहा है, अबे भाई ये खड़ा है अपनी जगह पर वरना कब की तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरह फ्लॉप हो जाता है, ऐसी बात नहीं है भाई, बहुत अनीस छोटा सा नाम है, बहुत बड़े बड़े प्यारे प्यारे से उस्तादों के नाम है यार, जिनकी वजह से यानी कि समझ रहे ना आप, रेडियो है ये आपकी हुस्ने समात है, यानी कि समझ रहे हैं ना कि आप मुझे इस तरह कह रहे हैं। अच्छा जी जिगर कुछ कार्टून ऐसे भी होते हैं कि अपने नाम बताने पर शर्माते हैं क्यों भाई, आपको मैं बताऊं, मैं तो ये वाला लफ्ज तो नहीं यूज कर सकूंगा, इस्तेमाल कर सकूंगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं स्पेशली फेसबुक पर सोशल मीडिया पर जिन्होंने अपने असली नाम नहीं बताए होते, और इवन रेडियो में भी बेतहाशा खवातीनों में ऐसा है कि जिन्होंने अपने फेक नाम से मैसेजेस होते हैं, और ये खवातीन का कोई मसला नहीं, उनकी मजबूरी है भाई, होना चाहिए ऐसा, मेरी नजर में होना चाहिए खवातीन के हवाले से।
1: हाय हाय तुम्हारा नाम आ रहा था रेडियो पे,
0: वरना पड़ोसन फौरन आ जाएगी। और अजीब अजीब सी सोचे भी होती हैं लोगों की, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, हाँ तमाम ही छोटे और बड़े सुनने वालों को खूबसूरत कानों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम, मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि सब जागते और सुनते हुए प्यारे दोस्त आफियत से और पुरसकून होंगे, तमाम ही मोहब्बत पसंद लोगों के लिए कल्बी दुआएं, सदा सुकून में रहें और रहने दें। यह है हमारे फरहान रजा साहब एबटाबाद से, भाई नई चीज लेकर आए, और भाई एक सॉन्ग की फरमाइश करनी है, अगर पूरी हो जाए तो मेहरबानी होगी। असगर खोसो का जाना रे जाना रे जाना रे, डेडिकेट फॉर एने भाई। अरे नीज साहब ये ढूंढना पड़ेगा गाना, उसका वजह है, और वसीम कह रहे हैं कि अनीस भाई को पूरी कोशिश होगी कि चले ढूंढ कर हम चलाते हैं। वसीम साहब कह रहे हैं नदीम साहब आप कैसे हैं, सलाम सबको, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई वसीम, और सलाम नदीम, सब सुनने वालों को मालूम नदीम तुम मुझे याद नहीं करता, और मेरे बाप सत्तार को सलाम, सब सुनने वालों को भी सलाम, मैं आज आपका साथ हूँ, अली मीर हुसैन भी सुन रहे हैं, अरे भाई क्या बात है, अली साहब भी सुन, शोहरे मौसूफ मालूम शुमा खूब है, हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में और आपको गाना भी सुनाएंगे आज, बड़ा अच्छा सा और एक नदीम भाई एक टाइमिंग तो रखो, कभी 11 बजे तो कभी 1 बजे। वसीम साहब सिर्फ पीर और मंगल को जो है मेरा शो 11 से 1 होता है, बुध जुमेरात और जुमे को शो जो है वो रात को 1 बजे से 3 बजे होता है, यानी कि समझ रहे ना। आई एग्री विद यू यस्टरडे, आई सेड यू थैंक्स इन एडवांस बट यू नॉट प्ले माई सॉन्ग, माई वाइफ वेरी मच एंग्री विद मी, सो प्लीज टूडे प्ले माई सॉन्ग। अच्छा भाईजन, सबसे पहले तो मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा आता भाई है फरहान भाई, कि जब मैं आपको पता नहीं है कि कितनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के गाने वाने ढूंढने में और फिर चलाने में, ये देर सवेर जो होती है ना ये ढूंढने में हो रही होती है। और आपकी वाइफ के लिए मुझे अच्छी तरह याद है मैंने गाना चलाया था, गाना ढूंढ के चलाया था, लेकिन खैर हम आज भी चला देंगे। फरहान भाई अपनी वाइफ को बोलिए सुनती रहे। और मैं पहले नोट कर लूं ताकि मैं मुझे ये 100% याद रहे, ठीक है ना जी। याद कर लिया। तंदुरुस्त सेहत के लिए दुआ है जनाब अय्यूब आफरीदी की जानिब से, सबा गुल के लिए और महानूर के लिए और कामिले सेहत की भी दुआ है। कितने अच्छे हैं अय्यूब लाला, ओके टेक। महानूर के लिए तंदुरुस्ती के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं अनीस साहब ने भी। और ये जनाब आ गई हमारी प्यारी सी बहन हलीमा पठान। अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई, क्या हाल है, कल से बुखार भी तेज है, खांसी भी बहुत हो रहा है, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। भाई सारे बीमार आ रहे हैं, नदीम भाई डॉक्टर बन जाए, मैं लगता है पूरी शुड़िया ले आऊं, एक दो मतलब जो यहाँ पर आ जाए उसको दवाई दे दूं और बाकियों के लिए चुप चुप चुप। ये भी अजीब काम हो रहा है। समी साहब कह रहे हैं, अरे समी भाई कैसे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, सलाम गुफरान भाई को और सब सुनने वालों को सलाम। और एक गाने की फरमाइश कर दी है उन्होंने, आज आप प्ले करना सॉन्ग गुफरान भाई पे मत डाल देना यार, मैं पूरा कोशिश करेगा यार। तो वैसे आज गुफरान भाई है भी नहीं, चले इसी बात पर हम आपको दूसरा गाना कोई सुनाते हैं। अच्छा सर नहीं आपकी फरमाइश चलेगी, डोंट वरी हाँ। अच्छा भाई जो गाना सुना रहा हूँ ये नया गाना है भाई, शू मी पीली दफा चलेगा। पहले आपको माइकल सुनाया, फिर आपको अखियां तो ले ले, और अब

0: वेलकम बैक सुने करो ना करो कना करो गेला ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। और आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब। यासिन खान दिल पर जाना कहता है कसम से यार गया है इसीलिए सुकून है। मैंने कहा था बेगम नहीं होगी। अच्छा जी बिल्कुल विदाउट जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ, अकेला हूँ।
1: अकेले सो सुन रहे हो, बेगम नहीं सुनती है सो।
0: ये हमारे यासिन खान दिल पर जान है यार, बहुत दिन के बाद तुम्हारा ये मैसेज देख कर यार दिल खुश हो गया। और युव लाला का मैसेज अभी हम पढ़ते हैं, पहले हम इनका पढ़ लें मैसेज। क्या नाम है हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब एफबी एरिया कराची से। और सजाद अली या नूरजहान की आवाज में कोई गाने की फरमाइश की है। नसीम कुरैशी, खिताब लाला, युब आफरीदी, समी शेख, इमरान रियाज और मेरे वालिद साहब को इन्होंने सलाम कहा है। अलीमुद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब एफबी एरिया कराची से सुने हो, आपकी टीचर सुन रही है। टीचर मैं तुमसे कुट्टी हूँ, टीचर के मैसेज ही नहीं आते। और उसको बोले कंजूस बैलेंस भी लोड कर लिया करो। वैसे आपको चाहिए इरफान भाई, उसको बैलेंस लोड करवा के दें ताकि वो मुझे मैसेज करे फौरन। इंडिया वाइड वॉश सो हैप्पी। अच्छा भाई वाइड वॉश कैसे हो गया यार, 5 T20 मैच थे इंडिया के, एक तो एम ही चला गया, दो जो है वो ऐसा हारा है कि कमाल। अच्छा मुझे इंडिया के हारने से कोई इतनी ज्यादा खुशी नहीं है कि इंडिया हार गया भाई, इंडिया का बैंड बज गया। मुझे खुशी इस बात की ज्यादा है कि उनका जो तकब्बुर है ना, स्पेशली उनके जो टीवी में बैठते हैं एंकर्स, और वो पता नहीं इंडिया के जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनको भगवान बनाया हुआ उन्होंने, अब वो उन्हीं खिलाड़ियों को बुरा भला कह रहे हैं। यानी कि समझ रहे ना आप, उनकी जो तड़प है ना वो मुझे मजा कर रही है। बस यार खेल में तो जीत हार होती है, अब इंडिया हार गया तो क्या कर सकते हैं भाई, हार गया तो हार गया। लेकिन मुझे मजा इस बात पर आ रहा है कि वो जो तड़प रहे हैं ना, यानी कि समझ रहे हैं। हाँ फ्राइडे को मेरी भांजी आयत की बर्थडे है तो भाई याद दिला दीजिएगा। हलीमा सिस्टर के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। इरफान मेमन के शायरी मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। और अनीस कह रहे हैं अल्लाह महानूर को सेहत दे, ये हो गया था मैसेज। लाला कह रहे हैं कि सबागुल आप दो दाने अजवा खजूर खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सेहत और आराम अता फरमाएगा, आमीन सुमा आमीन। वैसे शिफा तो है उसमें। अली मीर साहब आ गए हैं, आपको सलाम। अरे अली मीर साहब ने भी फारसी में मैसेज किया है और आपको सलाम कहा है। बोलता है शुमा खुश है, आवाज शो अच्छा है, मौला खुश रखे आपको भी अली मीर साहब। और अयूब आफरीदी कह रहे हैं जीबीएन जब बीमार होती थी तो उसको आम खाने से आराम मिलता था। वैसे मैंने सुना कि अयूब लाला आम खाने से तो आपको आराम मिलता है। तो बात है हमने क्या करनी है, अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी। तो जब मैंने माइकल का ये वाला गाना सुना था ना डोंट स्टॉप, तो मुझे बचपन याद आ गया अपना। यकीन मानिए कि वाकई में हकीकत में बता रहा हूं आपको। और बड़ा अच्छा लगा कि यार जब ये गाना आया था तो कितने हम खुश होते थे ये गाना सुनकर। और हमारा एक दोस्त था, बल्कि मेरा एक कजन था जो कि माइकल का बहुत बड़ा फैन था, और वो जो है माइकल के गाने पर बहुत डांस करता था बेहतरीन, और बिल्कुल वैसे स्टेप लेता था। तो वो दिन याद आ गए, हाय कितने अच्छे दिन थे। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लिसनर्स होंगे कि जिन्होंने अपना स्कूल कॉलेज जो है वो पास आउट कर लिया, अब शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे होंगे, घर में बैठे सुकून के साथ शो सुन रहे हैं, मगर वो यादें, वो कुछ दोस्त, वो शरारतें, हाय हाय हाय हाय हाय क्या बात है क्या बात है। चले इसी बात पर जो फरंगी गाने सुनते हैं उनको एक और गाना डेडिकेट करता हूं, उनकी यादें ताजा हो जाएंगी। हाँ जी आलो फड़ो।

करेंगे सुनियो आप सबको। और बाइबल लॉन बोनियम, और आई होप कि आपको ये ट्रैक पसंद आए होंगे। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, अच्छा कादिर बख्श बलोच साहब आ गए। एने भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम असलाम। आसिफ भाई को आज घर वालों ने वापस रहीम यार खान गांव भेज दिया है। किसी हद तक सही किया है हमारे आसिफ भाई, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फरमाए। और वैसे नदीम भाई, फुटबॉल में कैप्टन का क्या रोल होता है? उसमें तो सारे ही भाग रहे होते हैं,

बाकी गेम्स में कौन सा कोई बैठा होता है। क्रिकेट में भी कैप्टन जो होता है वो भाग भी रहा होता है, चाहे वो रन बना रहा हो या फील्डिंग कर रहा हो या बॉलिंग कर रहा हो, यानी कि समझ आए ना, विकेट कीपर के अलावा। वैसे ही आपको भाग मतलब फारिग है फुल टाइम फरहान भाई, फारिग लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये शरारती लोग करते हैं। आप किस कैटेगरी में शामिल करते हैं जरा बताइएगा अपने आप को, शरारती हैं। जिगर बाज शोहरों को अपनी बीवी की बात पर 11,000 वोल्ट का करंट क्यों लगता है? 11,000 वोल्ट आपने कम बताया। बाज शोहरों को नहीं लगता है, ये हर शोहर को लगता है। वो अलग बात है कि वक्त अलग अलग मुकर्रर है, कुछ को ये करंट पड़ता रहता है, कुछ को कम पड़ता है और कुछ को कभी कभार पड़ता है, लेकिन ये करंट के अताप का शिकार हर शोहर होता है। आप बताएं, आप तो मतलब ये तो एक बीवी का के हवाले से बात हो गई ना कि करंट जो है 11,000 वोल्ट का करंट, तो आप तो तीन तीन चार चार के चक्कर में सोचें, अगर दो भी हुई तो ये 11,000 की बजाय 22,000 हो जाएगा। तो लिहाजा आप सोच समझ के इस हवाले से सोचिएगा, यानी के समझ रहे हैं ना आप। नरीन मैंने कहती हैं बोनियम बहुत सुनती थी इनके सॉन्ग, इसका मतलब हमारी बहन को अच्छा लगा था। ब्राउन गर्ल इन द रिंग, एक और गाने का इन्होंने बताया है, शी लुक्स लाइक ए शुगर इन अ ड्रम। क्या याद दिला दिया हमारा बचपन का गाने, याद दिला दिया भाई, अच्छा लग रहा है भाई सबको, पुराने भी और नए भी सब मिक्स चल रहे हैं। ओके ठीक तरीके से यार, समी भाई उफरान भाई नहीं है अभी, लेकिन हम कुछ ना कुछ करेगा यार, बल्कि अभी करेगा। अभी हम जाएंगे जनाब एक और ट्रैक की जानेब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली जीबीएन को, निगत को, माहीन को, शेरबानो को, सरागुल को और महनूर को, अयुबा फरीदी की जानेब से एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। और बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जाने में, लेकिन मैसेजेस के जाने बढ़ने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। खुश रहने के तरीकेकार क्या होते हैं? बहुत से लोग हैं, अभी मैसेजेस भी आते हैं जनाब के, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया। दुआओं की दरखास्त भी होती है, वो होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन इसका अपने ऊपर तारी नहीं करना चाहिए। कुछ भी चीज हो, हालात कैसे भी हो, अच्छा फितरत ऐसी है इंसान की कि इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं मेरे जैसे, ये जानते बूझते कि भाई जहन पर तारी नहीं करना, अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, लेकिन हालात, माशरा, फितरत ऐसी होती है कि वो आप के ऊपर उसके असरात होते हैं। दिल जो होता है ना, दिल का बड़ा ताल्लुक होता है इसके साथ। जब दिल उदास होता है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता, बात करना भी अच्छा नहीं लगता। मगर दिल को खुश कैसे किया जाए? बहुत ही आसान, गुदगुदी कर दो। और नदीम भाई, हमारी गुड़िया मुश्क गायब है। सिर्फ मुश्क नहीं गायब है, संजू भी गायब है। आज संजू भी गायब हुआ है। संजू किधर गायब है? संजू को अभी हम जो है पुकारते हैं, मुश्क को पुकारते हैं, और वो जरूर आएंगी इंशाल्लाह, अगर फ्री हुई तो। लेकिन अगर फ्री नहीं भी हुई तो उनको फ्री कर लेंगे, यानी कि समझ रहे ना आप। और वैसे मैं देख रहा था, चेक कर रहा था कि कौन कौन याद करता है मुश्क को, शोको चंचल को, चुलबुली को। इतने प्यारे प्यारे से आप लोगों को लतीफे भेजती है, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आती है। अच्छा ये भी बहुत बड़ा काम है, मैं इसमें क्रेडिट देता हूँ उसको, मुश्क को। ये वो बच्ची जो है वो भरपूर जिंदगी के साथ शो में शामिल होती है, और अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, लंबी उम्र अता फरमाए, और इसी तरह चहकता महकता रखे। तो मुश्क आ जाओ भाई। तमाम ख्वातीनों हजरात से दरख्वास्त है कि मैसेज में कंजूसी ना करें। संजू मुश्क सबा गुल मैसेज किया करो। यार क्या बात है यार, अयूब आफरीदी भाई जबरदस्त मैसेज किया, ये कंजूसी चल रही है। अरे हाँ यार, मुश्क के पास पता नहीं बैलेंस भी है या नहीं है, ये कभी हमने पूछा नहीं है। होता है ना यंगस्टर्स के साथ ऐसा ही है। अच्छा जी नदीम भाई, आपको और सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक गाना अगर हो जाए, सलीम एमन बिरयानी वाले हैं ये। सलीम एमन आज आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। एने भाई कल के शो में मजाहिया शायरी रखे लिए, इसलिए कि मुश्क ही काफी है, हमारे इंतखाब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुश्क भी है और हमारे इरफान मेमन भी है। अच्छा कल एक अजीब सीन भी हुआ, मैं आपको बताऊं। इरफान मेमन से मुझे ये बात याद आई कि इरफान मेमन ने इस हवाले से शिकायत की। एक और भी थे हमारे वसीम साहब, सलीम साहब एक बिरयानी वाले भी थे, और इरफान मेमन भी, इरफान मेमन कह रहा हूं, सलीम मेमन। तो इन लोगों ने ये, और उसके साथ साथ और कौन था, कुछ और भी मेरे जरीन नूर थी, और भी मेरे बेतहाशा ऐसे लिसनर होंगे कि जिनकी शिकायत ये थी कि मैंने उनके मैसेजेस नहीं पढ़े। 3636 पर मैसेजेस आए नहीं, और आप सबको मैं एक बात बावर करवा दूं, 3636 के मैसेजेस मेरे दिल के बहुत करीब हैं आप लोगों के। आप जिस मोहब्बत से, प्यार से मुझे 3636 पर मैसेज करते हैं, मैं जितने जोड़ तोड़ कर मैसेज पढ़ता हूं, ये आप मेरा हौसला है और मोहब्बत है। तो कल मेरा अपना, मैंने इस बारे में सोचा कि मैसेजेस तो आ रहे थे, मगर स्पेसिफिक बहुत सारे ऐसे लिसनर्स थे जिनके मैसेजेस नहीं आ रहे थे। ऐसा क्यों हो सकता? हो सकता है कि किसी एक नेटवर्क का सिलसिलाकार जो ये सॉफ्टवेयर है वो उठा ना रहा हो। तो उस सॉफ्टवेयर के जितने भी उस नेटवर्क के जिन जिनके पास नंबर होंगे, उनके मैसेजेस मेरा ख्याल है नहीं आए थे कल। लेकिन खैर, इस पे नाराज नहीं होने। और समी कुछ कह रहे हैं भाई, समी क्या कह रहे हैं? समी बताओ तो सही, आज आप प्ले करना सॉन्ग? हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा मुश्क के लिए उन्होंने कुछ कहा है, हमारे
سمی صاحب نے, نخرے تمہارے ساتویں آسمان پر ہیں اور پہنچی تم فریج کے اوپر والے خانے تک نہیں سکتی اور پہنچ تم فریج کے اوپر والے خانے تک نہیں پہنچ سکتی. اور پہنچی تم فریج کے اوپر والے خانے تک نہیں. اب میں نے صحیح پکڑا ہے شیر, نخرے تمہارے ساتھ میں آسمان. سبھی بھائی یہ شرارتی میسج ہے نا, مشکل یہ نہیں کہو یار, وہ بڑی اچھی سی ہے, پیاری سی بچی ہے. کیسا دیا بھائی, اب اس کا جواب تو مشک ہی دیں گی. مشک اب آپ نے جواب دینا ہے اس کا, سمی کا. نخرے تمہارے ساتھ میں آسمان پر ہیں اور پہنچتی تم فریج کے اوپر والے خانے تک نہیں. مشک کیا کہیں گی آپ اس پر, ذرا بتائیے. اور جناب لالا کہتے ہیں کہ خوش رہنے کے لیے جگر کے شو میں بھی بے حساب میسج کریں. یہ ہوئی نا بات یار, لالا یار کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ, مجھے یقین مانیں بالکل چوسا آم لگ رہے ہیں. اسی بات پر ہم جائیں گے ایک بہت ہی پیاری سے ٹریک کی جانے والی, یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں سمی کی جانب سے ان کی ہونے والی دلہن کو. ایلو پھڑو

वेलकम बैक तेरे नाल। अच्छा भाई अब समी आवी बात और से सुने, ये आप तेरे नाल गाने की फरमाइश करते हैं तो आप इसके साथ साथ ये जरूर लिख दिया करें कि हैदर का गाना है। किसका है? हाँ, उससे ये होता है कि ढूंढने में आसानी होती है। और आपको ये भी बता दूं कि तेरे नाल के हवाले के नाम से इस टाइटल से रिलेटेड बहुत सारे गाने हैं, मतलब सैकड़ों बने हुए। तो जनाब मैसेजेस कर रहे हैं आप, कह रहे हैं शुक्रिया नदीम भाई, समी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेजेस कर रहे हैं आप 3636 पर। अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, डॉन उर्फ नवाज गबोल की तरफ से। अरे भाई आपका नाम होगा नवाज गबोल उर्फ डॉन करो ना, तुम तो पके पके डॉन बने हुए हो। आपको बहुत सारी मोहब्बतें और एक सॉन्ग नवाज गबोल के नाम पर अगर हो जाए तो क्या बात है। और कह रहे हैं आज आप लाइव नहीं आए एफबी पर, क्यों सर? लाइव यार नवाज भाई, डॉन साहब कभी कभी आता हूँ। नहीं नहीं मैसेज आ रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं कदा होता है या मी कदा? मी कदा नहीं होता, मैं कदा होता है। मैं

अच्छा भाई, सिर्फ गाने के हवाले से बोला है सबीन ने और कुछ नहीं कहा। इरफान भाई क्या कह रहे हैं, मेरे लिए सुने हो आप दुआ नहीं करते, मुझे कार का हो जाए आप लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा, मेरी कार का हो जाए। अच्छा इस हवाले से मैं भी बताता हूँ, मुश संजीदा सिस्टर जरीन नूर अरूसा सिस्टर FM 100 की सलीम मेमन भाई गायब है, कल मानूर ने भी आपको कल मैसेज किया था। हाँ भाई देखो मानूर का भी मैसेज नहीं आया, काफी मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स के मैसेजेस के वजह से ही था। अच्छा संजू और मुश्क तो गायब हैं, साथ में हमारी जरीन नूर भी गायब है, उसके भी मैसेज जो उसने भी शिकायत की थी ना, तो ये मेरा ख्याल है वो नेटवर्क का ही सीन चल रहा है अभी भी, कि बहुत सारे मैसेजेस नहीं आ रहे। लेकिन मेरा ख्याल है मानूर का मैसेज एक मैंने पढ़ा है, वो मैं शुरू में देखता हूँ चेक करता हूँ। अब आ जाए आपकी कार की जानिब, तो भाई दुआ तो आपके लिए है कि अल्लाह ताला आपको वो आसाइशें अता फरमाए जिसकी हर इंसान को जरूरत होती है, जायज ख्वाहिश है ये। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, मर्दों के हवाले से बात कर रहा हूं, ये आप दुआ तो अल्लाह ताला की जानिब से आप हम सब करेंगे ही आपके लिए, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए जो जरूरी है ना वो चीज है इरादा। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, ये मतलब आजमूदा बात बता रहा हूं मैं आपको, कि जब बहुत सारी ऐसे इंसान की जिंदगी में चीजें होती हैं जो कि उसकी इस्तेताद से बाहर होती हैं, चाहे वो गाड़ी हो, मिसाल के तौर पर मैं हूं, मैंने गाड़ी खरीदनी है, तो अब उसके लिए जो है मैं कहूं यार दुआ करो यार कहीं से हो जाए यार, पैसों का सिलसिला हो जाए यार कुछ पैसों, ये तो आदमी सोचता कि कब पैसे आएंगे कब मैं गाड़ी लूंगा, तो ये अपनी जगह पर है, लेकिन इसके लिए इरादा करना बहुत जरूरी है। जब आप इरादा करते हैं और फिर उसके लिए कोशिश करते हैं, पक्का इरादा की बात कर रहा हूं, इरादा तो आपने अभी भी किया हुआ कि यार गाड़ी ले लूं, ये इरादा नहीं, कोशिश वाला इरादा कि बस गाड़ी लेनी है भाई, मैंने 6 महीने के अंदर 1 साल के अंदर अंदर गाड़ी कुछ भी हो जाए मैंने खरीदनी है। अब उसके लिए आप चाहे BC डाल रहे हैं, अब BC आपने मिसाल के तौर पर डाल दी 1 लाख रुपए की, अब 1 लाख रुपए में तो मोटरसाइकिल नहीं आती, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, तो इरादा किया हुआ है आपने, लाख जब हाथ में आ गया इधर उधर कहां से आपको अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा, इकट्ठे करके आपको अल्लाह ताला गाड़ी दिला देगा, लेकिन इरादा बड़ा जरूरी है। अब ये मिसाल तो हो गई गाड़ी की, तो ये जिंदगी की जो हम ये जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें भी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे इरादे। बहुत सारी हम ख्वाहिशात रखते हैं घरों में और उसके साथ साथ इरादे भी होते हैं, लेकिन बस जबानी कलामी इरादे होते हैं। मिसाल के तौर पर भाई मेरे घर LED लगी हो, बेहतरीन बड़ी किस्म की, छोटा सा TV है किसी के घर 14 इंच का मिसाल के, तो उसकी ख्वाहिश होगी यार थोड़ा सा बड़ा हो जाए यार 32 इंच का बल्ले आ जाए, जिसके पास 32 इंच का होता है वो बोलता है यार 42 इंच का हो गया, 42 इंच का भी आ गया यार 56 में कितना अच्छा लगता है। तो ये तो खैर इंसान की ख्वाहिश है, लेकिन इसके साथ साथ आप इरादे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इरादा अगर मजबूत हो जाए और आपने ये अपने साथ वादा कर लेना है कि भाई मैं इस साल में मैंने गाड़ी खरीदनी है कुछ भी हो जाए, तो इरफान मेमन भाई होगा ऐसा। अच्छा कहते हैं कि पैसों का मसला नहीं है, अम्मी सिस्टर मना कर रहे हैं, बस यार मसला है मेहनत से दूर नहीं भागता सुने हो, मैं ये आपके लिए नहीं, मैंने एक मिसाल दी थी क्योंकि बाइक पर 4 एक्सीडेंट हुए हैं इस वजह से मना कर रही हैं। तो गाड़ी में कार जो है गाड़ी में और मोटरसाइकिल में फर्क है भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। जब भी घर से निकला करें तो एक अदद घर में आप एक बना लें, बाढ़ सी बना लें काली मुर्गियों की, घर से जब भी निकला करो एक मुर्गी से सदका दे दिया करो। लेकिन गाड़ी में वैसे ये होता है कि चांसेस कम होते हैं एक्सीडेंट के भी, और अगर खुदा ना खास्ता दाएं बाएं से लग भी जाए तो इंसान की जिंदगी महफूज रहती है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। इसी बात पर हम जाएंगे सबा गुल की फरमाइश की जानिब, सबा गुल ने कहा है कि भाई एक गाना हो जाए नदीम भाई, तो सबा गुल तुम्हारी फरमाइश एलो फड़ो।

वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दे जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुने स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ आपका और मेरा साथ है जनाब तीन बजे तक और तीन बजे तक ये हल्ला ते गुल्ला जारी हो सारी इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए के चाय लिखिए स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर और मैसेजेस की जानिब बढ़ते हैं।

ब्यूटीफुल ट्रैक है, तुम नाराज हो, सज्जाद अली की आवाज, और उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। भाई नाराज हो गया, कहाँ गायब हो भाई, ए संजू। और जरीन नूर कह रही है थैंक यू, जीती रहो मेरी प्यारी सी बहना। और ये जहन में रखना, आप भी, सलीम मेमन भी, और भी एक दो लिसनर्स ऐसे हैं जिनका मुझे पता चला था कि उनके मैसेजेस जो है मैं नहीं पढ़ रहा, तो आप लोगों के मैसेजेस यकीन मानिए हम तक नहीं पहुंच रहे, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ भाई कादर बख्श भाई और अयाज भाई के शो में मुश्क लैला, अयाज भाई के शो में कह रही थी कि वो आउट ऑफ सिटी जा रही हैं। ओए होए कादर बख्श भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया भाई। मुश्क के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि वो खैर आफियत के साथ जहां जा रही हैं पहुंचे। दुनिया में अच्छे इंसान की तलाश में मत निकले, ना मैं घर पर होता हूं, मैं घर पर ही होता हूं। सलीम मेहमान आखिरकार आ ही गए। यार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि मैसेज कम क्यों आ रहे हैं। और अफजाल भाई का मैसेज हो गया था, संजू के नाम गाना जरीन नूर की जानिब से हो गया, और कह रहे हैं संजू भी सुन रही है, गुलबानो भी सुन रही है। अयूब लाला आपको कैसे पता है कि संजू भी सुन रही है, गुलबानो भी सुनती है? दोनों से मैसेज की रिक्वेस्ट है। अयूब लाला आज रिक्वेस्ट बहुत कर रहे हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा भाई हमारे प्यारे से नवाज गबोल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप तकरीबन ऑलमोस्ट 12 साल से सुन रहे हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और जनाब हाय सलाम, आज मीर हसन सुन रहे हैं और वो बोलते हैं कि वैसे ही बोलो जैसे रबाब बोलते हैं। हाय अल्लाह जी, तो मीर हसन साहब को हम आपकी जानिब से गाना डेडिकेट करना है। मेरे जहन से ही निकल जाता है मैं क्या करूं भाई, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और खुश रहने वाली कहानी जो है वो कहां तक पहुंची, किसी ने कुछ नहीं कहा इस हवाले से, ले चलें उसको छोड़ें। आप ये बताइए कि आप लोग मेरा शो सुनकर खुश हुए या नहीं हुए। अच्छा एक और गाना ऐसा ट्रैक, अच्छा मेरी प्यारी सी बहन क्या नाम था नौरीन तौसीफ, वो भी गायब हो गई है भाई, लगता है आज सबको नींद बहुत आ रही है। समी भी गायब हुआ है फुल टाइम। तो खैर जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं ये बताऊं कि कुछ पुरानी गानों से यादें वाबस्ता होती हैं, बचपन याद आ जाता है, लड़कपन याद आ जाता है, जवानी याद आ जाती है, या इस उम्र में है तो याद आ जाता है, ओल्ड मेमोरीज जुड़ी होती हैं। तो ये ट्रैक भी बड़ा जबरदस्त ट्रैक है, इंग्लिश ट्रैक है, और आज इंग्लिश ट्रैक जो है वो याद आ रहे हैं पुरानी मेमोरीज के। तो अभी सुनो जरा

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, इट्स माय लाइफ ब्यूटीफुल ट्रैक है, मैं जाग रही हूँ, नरीन मैंने कह रही है और एंजॉय भी कर रही हूँ शो को, थैंक यू वेरी मच। जीती रहे, तबीयत कैसी है वैसे नरीन आपकी, आप ये बताइए, होपफुली अच्छी होगी। अरे ये ट्रैक अभी मैं ढूंढ रहा हूँ जो आप कह रही हैं, क्योंकि मुझे मेरी कलेक्शन में नहीं मिल रहे हैं, हम क्या करें कहाँ जाएं, यानी कि समझ रही है ना आप, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और इरफान भाई क्या कह रहे हैं, बहुत दिन के बाद यासीन भाई बहुत दिन के बाद आए शो में, उनको वेलकम कहते हैं, बोने जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, बोना बोनी। वैसे अगर हम कोई बीज जो है वो जमीन में क्या करते हैं, बोते हैं, एमी का है। अच्छा जी सुनियो, रूसर सिस्टर आपको मैसेज करे तो आप समझा देना कि आपकी बात समझ जाए, कार वाली बात सुनियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी प्यारी सी बहना रूसा मेमन अगर सुन रही है तो मैं ये कह रहा हूं कि गाड़ी बहुत बेहतर है मोटरसाइकिल से, इसमें आदमी बनिस्बत मोटरसाइकिल के सेफ रहता है। और मैं ये समझता हूं कि सवारी आजकल के दौर में वो भी एक नेमत है, तो इस हवाले से अगर आपकी इस्तेदात है गाड़ी को खरीद सकते हैं, इरफान भाई को खरीदने दें, आगे आपकी मर्जी है भाई। सुनिए मैं तो आपका शो 2026 जुलाई से सुन रहा हूँ। अरे इरफान मेमन कितना अरसा हो गया यार, और गाना प्ले करने के लिए थैंक यू। अभी तो एक और होगा। अच्छा जी नसरुल्लाह साहब जो हैं सादी टाउन से सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम सलीम बिरयानी वाले भाई, आप अपने एड्रेस क्यों नहीं दे रहे हो, मैं असगर अगर आपके पास आया तो पैसे देकर बिरयानी खाऊंगा, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ये सलीम मेमन फालूदे वाले क्या है। खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, अब फौरन से पेशतर भाई, वक्त तेजी से क्यों गुजर रहा है। तो हमारे प्यारे से फरहान भाई जो हैं वो अपनी वाइफ को एक ट्रैक डेडिकेट करना चाह रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि कल भी नहीं चलाया था, हालांकि हमने कल भी चलाया था। तो फरहान भाई अगर आप सुन रहे हैं तो आपकी वाइफ को तो ट्रैक डेडिकेट हो ही रहा है, लेकिन आपने एक अदद मैसेज जरूर करना है एपेटाबाद से, और हमें बताना है कि आपने ये गाना सुना।

वेलकम बैक कहेंगे गुमसुम प्यार द मौसम ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद करते हैं आपको आया होगा पसंद। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में क्यों दास फिरते हो सर्दियों की शामों में। मैसेजेस कर रहे हैं आप 3636 पर। अच्छा अब थोड़ी सी चर्चा भी करते हैं लेकिन यू भाई का मैसेज, जिगर दो ही गवाह थे मेरी मोहब्बत के, हाय हाय दो ही गवाह थे मेरी मोहब्बत के, वक्त और गुलबानो, वक्त गुजर गया गुलबानो मुकर गई। क्या है यार शेर बनाया आपने, वाह वाह वाह वाह वाह वाह। और जनाब मेजर नदीम अजीज मरीर कैंट से कह रहे हैं कराची से, कैसे हैं नदीम भाई, सभी को मेरा सलाम। आपका नाम भी नदीम, मेरा नाम भी नदीम, अरे वाह वाह, लेकिन आप मेजर हैं। और आपका अंदाज बहुत अच्छा लगता है और हो सके तो सज्जाद अली का सॉन्ग अगर हो जाए तो क्या बात है। मेजर साहब जरूर, मेजर साहब तुसी आए हो तो चलावांगे। और थैंक यू, मेरी कैटेगरी शुरू से ही शरारती है, बस दिल करता है हर वक्त किसी ना किसी को तंग करूं, मगर कभी कभी शरारत में मेरी धुलाई भी हो जाती है। फरहान रजा भाई, फरहान रजा भाई आपने ये नहीं बताया कि आपने गाना सुना है, मैसेज तो कर दिया। नसरुल्ला साहब कह रहे हैं कि कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाइएगा। नसरुल्ला भाई अब आपको कौन सा गाना पसंद है ये मेरी तो समझ से बाहर है, गाने तो सारे ही अच्छे चला रहा हूँ मैं। और अब वक्त भी ऐसा हो गया कि हल्का फुल्का स्लो गाना भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। नौरीन बहना आ गई हैं और कहती हैं कि तबीयत कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, रेगुलर मेडिसिन खा रही हूँ, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अच्छा नसरीन बहना, मैं आपको आपको तो ये बात बोल ही रहा हूं लेकिन उसके साथ साथ अपने और भी तमाम लिसनर्स को एक बात बता दूं कि मेडिसिन तो बहुत जरूरी है लेकिन जो खवातीन है ना उनके हवाले से एक खसूसी बात मैं बताना चाह रहा हूं, और मुझे 100% इस बात का यकीन है कि ज्यादातर खवातीन जो है जो मैं बात बता रहा हूं उस पर अमल नहीं करती होंगी, खसूसी तौर पर अपनी डाइट पर, यानी कि खाने पीने के हवाले से। खाने पीने में भी चले खा लेती होंगी ठीक है, मगर फ्रूट्स जो है वो खवातीन बहुत कम खाती हैं। कम खाने से मुराद ये कि ये एक कुदरती अमल कह लें, ये अल्लाह ताला ने औरत का दिल ऐसा बनाया है कि बस कभी कभी इंसान की अक्ल जो है वो भी दंग रह जाती है कि भूखा पेट भी हो और पैसे भी हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर घर में कोई चीज आ गई, मिसाल के तौर पर सेब आ गए, अब वो सेब खाने का दिल भी कर रहा है बड़ा, ठीक है ना, जो भी घर की औरत है उसका दिल भी बहुत कर रहा है, मगर जब उसने देखा कि बच्चे जो है ना वो उनका मूड हो रहा है फुल टाइम सेब खाने का, तो उसने अपनी उस ख्वाहिश को अपनी उस तलब को मार देना दिल में और बोल देना कि मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा। और उससे क्या होता है कि जी बच्चों ने भी खा लिया, शौहर ने भी खा लिया, माँ बाप ने सबने खा लिया, लेकिन वो जो है वो मतलब अकल दंग रह जाती है मेरी इस हवाले से। और अल्लाह ताला ऐसे ही औरत का मकाम, माँ का मकाम जो है इतना बुलंद नहीं फरमाता। ये दिल की बातें हैं जो कि नहीं करती औरत कभी भी। तो मेरी गुजारिश है कि अगर नौरीन के बच्चे सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ घर में इसी तरह लाते रहें, चाहे वो बनानाज हो, केले, सेब। और आजकल तो ये मौसम ऐसा अल्लाह ताला का नेमतों भरा मौसम है फ्रूट के मामले में खुसूसी तौर पर, कि बेतहाशा फ्रूट्स जो हैं वो गर्मियों में हमें मिलते हैं, जिसमें फलों का बादशाह आम भी है, केले हैं, सेब भी मिलते हैं, और खुमानी, आलूचा, और पता नहीं अंगूर, आपको खरबूजे भी नजर आ रहे हैं भैया आजकल तो, तरबूज। तो ये तमाम जो फ्रूट्स हैं ये अल्लाह ताला की नेमत है, तो इनका इस्तेमाल आप जितना कर सकती है ना, खुसूसी तौर पर जिनकी तबीयत खराब हो, खाना खाने को दिल नहीं करता, मगर आप कोशिश, मतलब आप घर वालों को खुसूसी तौर पर कहूंगा कि भाई फ्रूट चाट बना दी यार, फ्रूट खाने का दिल नहीं कर रहा, फ्रूट चाट बना दी, ऐसी दे दी, जबरदस्ती खिला दिया।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको ब्राउन गर्ल इन द रिंग बोनियम का ट्रैक एंड आई होप कि उनको बहुत अच्छा लगेगा। नदीम भाई फ्रूट्स तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ, आजकल जामुन बहुत शौक से खा रही हूँ, बड़ी अच्छी बात है और शौक से खाएं, डेली बेसिस पर खाएं आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। और अय्यूब लाला को सलाम, और लाला आप से पूछना था कि आपके पास कौन कौन से नस्ल के आम होते हैं, लंगड़ा चौसा सिंदड़ी दशहरी अलावा के अलावा भी कोई है तो सलीम मेमन कह रहे हैं बताएं, मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बता दूंगा कितने नस्ल के आम। अच्छा जी नसीर साहब ने भी सज्जाद अली की फरमाइश की है तो आखिर में हम सज्जाद अली का ट्रैक जरूर चलाएंगे और बहुत सारे लोगों को ने इसकी फरमाइश की हुई है, सबका नाम भी लेंगे। और अब क्योंकि वक्त भी बिल्कुल ही महदूद सा रह गया है तो जनाब अब आपसे इजाजत भी चाह रहा हूँ और जाते जाते सज्जाद अली की आवाज जो है आपकी समातों तक पहुंचाएंगे। और नसरुल्लाह साहब ने इसकी फरमाइश की और हमारे मेजर नदीम साहब ने इसकी फरमाइश की और हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब ने सज्जाद अली की फरमाइश की और इसके साथ साथ हमारे प्यारे से इरफान मेमन, अरूसा मेमन, अनम मेमन, महनूर मेमन और हमारी सायरा मेमन, सलीम मेमन और सलीम मेमन बिरयानी वाले, इन सब को जनाब आखिरी ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात आपसे होगी जनाब कल स्लीपलेस नाइट में रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।